ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका

0: पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तपे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने मां को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। आज आपने सुनी इसकी भाग संख्या 30। मुख्य गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुविचार।

स्वयं की ऊर्जा को महसूस करने के लिए, समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि ईश्वरीय ऊर्जा को समझा जाए। जब हम अपने आप को उस परम शक्ति के साथ एकाकार करने लगते हैं, तब वही ऊर्जा हमारे भीतर समाहित ऊर्जा के साथ मिलकर नए प्रकाश को उत्पन्न करती है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

आध्यात्मिकता नैतिकता का विज्ञान नहीं है। ये जिस जीवन में हम हैं, आध्यात्मिकता उसी को विकसित करने के लिए है। भक्ति संगीत में आइए सुनते हैं ये रचना, जिसे गाया है श्रुति सडोलीकर ने।

हमें अपने भीतर गहराई से झांकना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर शक्ति का एक स्रोत है। अगर उसे हम निरंतर खोजते रहेंगे तो वो हमेशा हमें बहता हुआ नजर आएगा। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत सुरैया की आवाज में, फिल्म है माशूका।

चित्रलेखा फिल्म से ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार साहिर, संगीतकार रोशन।

तलत महमूद की आवाज में अगला गीत पतिता फिल्म से। शैलेंद्र के बोलों को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

हसरत जयपुरी और शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

तो सोचिए कि अगर वाकई ऐसा होने लगे, किसी को देखने से जमीन और आसमां रुक जाए तो क्या होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होने लग जाए तो ये जमीन और आसमां कभी चल ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आसमां तो जिस तरह से स्थिर है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि जमीन कभी नहीं हिल पाएगी, यानी कि धरती गोल घूमना बंद कर देगी। तो इसलिए हर बार शब्दों को पकड़ना जरूरी नहीं है, उसके पीछे जो भाव छुपे होते हैं उन तक पहुंचना होता है। और बिल्कुल, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे चेहरे जरूर होते हैं जिनको देखते ही उनकी रुकी हुई जिंदगी चल पड़ती है, या फिर ये कहें कि अगर जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है और अगर वो शख्स दिख जाए तो जिंदगी सागर की तरह शांत हो जाती है। तो बिल्कुल हर दिन की पहली सुबह यही काम करना है कि ऐसे किसी चेहरे को अपने आसपास लेकर चलना है, जिससे कि दिन की शुरुआत तो बेहतरीन हो ही, साथ ही पूरा दिन गुजारने के दौरान जो कश्मकश आने वाली है, जो ऊपर नीचे छोटे मोटे दाएं बाएं

तनाव आने वाले हैं उनसे जूझने की ताकत मिल जाए। तो अभी तक आपने अपनी आंखों को नहीं खोला है और अभी भी उनींदे से हो रहे हैं, तो आपको याद दिला दूं कि भाई आज है शुक्रवार, अभी सप्ताहांत में फिलहाल समय है, आज के दिन को भी उसी जोश के साथ निकालना है ना। गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप तक पहुंचा देते हैं। मौसम कुछ मिला जुला सा है, सुबह अल सुबह तेज हवाओं का दौर चला था और जिसने कानों के पर्दों पर थपकियां लगा के हमें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर हमने अपने कमरों के वातानुकूलित यंत्र को बढ़ा रखा था तो हम तक वो हवाएं नहीं पहुंच पाई। कोई बात नहीं, अभी भी बाहर झांक कर इस ठंडक को महसूस किया जा सकता है और सूर्य देव के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो इससे पहले कि ये तपिश बढ़े, जल्दी से अपने दिन की शुरुआत कर दीजिए। हम लेकर आ चुके हैं आप तक कुछ बातें, कुछ गीत। बातों की शुरुआत हो चुकी है तो गीत पीछे कैसे रह सकते हैं।

बात तो सही भी है। अभिजीत जी और अलका याग्निक जो कह रही हैं, मान लेते हैं उनकी बात, बिल्कुल मान लेते हैं कि वादा अगर एक बार हमने किसी से भी या खुद से भी कर लिया है तो उसके बाद जमाना कुछ भी कर ले उसे मिटा ना सके। और मुझे तो लगता है कि किसी और से किए हुए वादे से ज्यादा दम होना चाहिए खुद से किए गए वादे में। भाई जो सोच लिया वो करना है और वो करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए। और मजेदार बात यह है कि ये कठिन है। हाँ, सुनने में ये लगता है कि नहीं, जो सोच लिया वो करके रहेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तब कई बार फिर से सोचना पड़ता है कि क्या मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन बस यही वो समय है जब अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि नींव जो होती है ना, उसे जब टिकाया जाता है तब वो काम बेहद मुश्किल होता है, लेकिन उसकी मजबूती के आधार पर पूरी इमारत बेहद सुंदर तरीके से खड़ी हो जाती है। तो ये जो खुद से किया गया वादा है, इसे निभाने की जो शुरुआत है वो बिल्कुल उसी नींव की तरह है जिस पर हमारी जिंदगी का या हमारे लक्ष्यों का या फिर हमारे सफर का पूरा ढांचा खड़ा होने वाला है। तो बस एक बार उस शुरुआत को करने की जरूरत है। ये कहा जा सकता है कि उसके बाद कायनात उसमें जुड़ जाती है। कुछ लोग ये महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ को अभी भी ये महसूस करना बाकी है। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा वादा नहीं करना है, छोटा सा प्रॉमिस, मेबी अ प्रॉमिस ऑफ द डे। कुछ भी हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, प्रकृति के लिए हो सकता है। तो एक छोटा सा वादा मैं आपको बताती हूं। जब आप अपने कार्यस्थल से वापस आ रहे हैं, कॉलेज से वापस आ रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, कहीं से भी शाम के वक्त वापस आ रहे हैं और पानी की बोतल आपके हाथ में है, उसमें जरा सा पानी बचा हुआ है, पहले तो आपको अपने आप को हाइड्रेट कर लेना है। पानी की कमी अपने शरीर में नहीं होने देनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर यह है कि उस बॉटल में जरा सा पानी बचा हुआ है तो उसे कहां गिराएंगे? बिल्कुल जी, आप मेरा इशारा समझ चुके हैं। घर में कदम रखने से पहले अगर आपको हरे हरे पत्ते कहीं दूर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं तो बस समझ लीजिए आपको वो उसी वादे की याद दिला रहे हैं कि इस पानी की बोतल का बचा हुआ पानी हम तक पहुंचा दीजिए। है ना छोटा सा वादा, इसे निभाने में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो बस देखते हैं आज शाम तक आप इसे याद रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल ये गाना देखिए, कुछ तो याद दिला रहा है।

जब कभी तुम यूं मुस्कुराते हुए आते हो तो मौसम बहार का लाते हो। बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ बातें कुछ गीत।

फरहत जाहिद कहते हैं कि खिड़की खोल के देखो, मौसम अच्छा है, चिड़ियों पर फैलाओ कि मौसम अच्छा है।

जिंदगी की जितनी भी भाग दौड़ हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए तो है ना कि अपनी और अपने अपनों की जिंदगी में रंग भर दें। वो बेनूर नहीं रहे, वो रंगीन रहे, उसमें सारी खुशियां भरी रहे, सुकून के पलों से लबरेज रहे हमारी जिंदगी।

जब हम जिंदगी के रंगों की बात करते हैं तो उन्हें तो हम अपने मन की आंखों से महसूस करते हैं, अपने दिल से महसूस करते हैं, लेकिन असल में जो रंग होते हैं उन्हें हम कैसे देख पाते हैं? हाँ, आपका सीधा सा जवाब होगा कि भाई रंग देखने हैं तो रंग तो हम अपनी आंखों से ही देखते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि असल में हम देखते आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखते हैं। और मजेदार बात यह है कि हमारा आधे से ज्यादा दिमाग आंखों को संभालने में ही लगा रहता है।

इसलिए तो कहते हैं नजरें चुरा के चलिए, नजरें बचा के चलिए। वैसे एक बात तो है, आंखों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका तो कहना ही क्या। कभी इधर तिरछी नजर से देखा, कभी गुस्से से देखा, कभी छोटी छोटी आंखों से मासूम चेहरा बना लिया। और आंखें ही तो है जो कहलाती हैं कि भाई ये हमारे भावों का दर्पण है, अब कुछ भी छुपा ले आंखों में तो झलक ही जाता है। तो इन आंखों को खोलकर जो हम करामाते करते हैं, उन सब के लिए ये भी तो जरूरी है कि आंखों को कुछ देर बंद किया जाए। तो हर दिन में अपने आप को ये भी याद दिलाना है कि भाई जितना आंखों को खुला और सतर्क रखना जरूरी है, उतना ही उन्हें बंद करके उन्हें आराम देना जरूरी है। ना ना ना ना, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चलो फिलहाल तो आंखें बंद करो और सो जाओ। आराम सिर्फ आंखों को देना है, दिमाग और शरीर को तो उतना ही चुस्त फुर्त चलते फिरते रहना है। और वो सिर्फ कितने सेकंड का समय मांगती है? चंद सेकंड्स, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 20 से 25 सेकंड्स। बस यही वो कुछ पल होते हैं जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपनी सारी शक्ति को एक बार फिर से इस सोच में लगा सकते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। वैसे ये तो कहा गया है कि जो कैमरा हमारी आंखों में लगा है उसका कोई मुकाबला नहीं। एक इंसान की आंख 576 मेगापिक्सल की है और एक जगह जब हम फोकस करते हैं तो मात्र 2 मिलीसेकंड का समय लगता है। इसीलिए हमारी आंखें उतना तेज और साफ कैमरा है जो वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है, तो इनका ख्याल रखना तो बनता ही है। और जब मैं बात कर रही हूं रंगों की, तो एक और बात आप तक पहुंचा देती हूं कि असल में हम आंख से 3 रंग ही देख पाते हैं, नीला, लाल और हरा, क्योंकि बाकी के सारे रंग तो इन्हीं तीनों को मिलाकर बनते हैं। और मजे की बात यह कि इन तीनों की मदद से हम तकरीबन 1 करोड़ रंग पहचान सकते हैं। नूरे नजर हो तुम, दिल का करार हो तुम, इन नैनों की गहराई में बसा मेरा प्यार हो तुम।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अक्सर हम अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि उठो, चलो, लगो काम पे। और जब हमारे दिमाग में कोई धुन सवार हो जाती है, जब हम अपने आप को शत प्रतिशत किसी लक्ष्य की ओर झोंक लेते हैं कि अब तो ये करके ही मानेंगे, जिस काम के लिए बैठ चुके हैं उसे करके ही उठेंगे, तो अक्सर आपने देखा होगा खुद के साथ भी या ऐसे उन लोगों के साथ भी जिन्हें सनक होती है इस किसी काम को पूरा करने की। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने होश गंवा देते हैं, खाना पीना नींद सब ताक पे रख देते हैं, ख्याल ही नहीं रहता है और पूरी ताकत से बस उस एक ही काम में जुट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिल और दिमाग पूरे तरीके से प्राथमिकता देता है उस कार्य को करने के लिए। और दिमाग जब उस काम में उलझ जाता है तो वो समझ जाता है कि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके चलते भूख और प्यास इसके जो संकेत हैं ये दिमाग दबा देता है। शरीर की ऊर्जा बचाने के लिए और काम पर ध्यान लगाने के लिए हमारी जो पाचन क्रिया है उसे धीरे कर देता है और बस इसी के चलते भूख का एहसास नहीं होता है। कई बार ये भी होता है कुछ लोगों के साथ कि कई घंटे बीत चुके होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि बस कुछ ही देर तो काम किया। वैसे अक्सर कलाकारों के साथ ऐसा होता है या फिर वो जुनूनी लोग जो सोच के बैठे हैं कि आज तो इसे करके ही उठना है। कुछ भी कहिए, अगर आपने इस एहसास को लिया है तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह एहसास बहुत प्यारा है क्योंकि जब हम उस काम को करके उठते हैं तब लगता है वाह कुछ तो खास हुआ है। और अगर आपने अभी तक इसे महसूस नहीं किया और आपको लग रहा है कि ये मैं कौन सी कैसी किस जहान दुनिया की बातें कर रही हूं, अरे तो फिर क्या करना है, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और आज ही अभी से लग जाइए। बिल्कुल महसूस करना तो बनता है कि किसी काम के लिए जुनून कैसा होता है और जुनून के साथ उस काम के पीछे पड़ना कैसा होता है। फिलहाल इस पूरे घंटे के दौरान मेरा यही लक्ष्य है कि आपके दिन को और भी ऊर्जा से भर दिया जाए

बिल्कुल जी, आपसे हमारी मोहब्बत यूं ही बनी रहेगी और हर सुबह इसी तरह आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल अपने दिन को बिल्कुल इसी तरह ढिंचाक बना के रखिए। इस झूमती धुनों के साथ आपको छोड़े चले जा रही हूँ, मैं थी आपके साथ शैला। आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। लीजिए सुनिए दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
5: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था

0: कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैनी से साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2

0: पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमरीका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में हैं जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड तीन गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क चार गुना बड़ा हो गया है।
1: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi for Prime Minister Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन और पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। आई होप इट वॉज करेक्ट बट माई डियर नरेंद्र, डियर प्राइम मिनिस्टर, आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रांस लव।

0: विकसित भारत रोजगार योजना इन न्यू दिल्ली टुडे. गवर्नमेंट अप्रूव लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर. सुबह के 8:30 हो चुके हैं. आइए मिलकर सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम. नमस्कार.

0: जय हो शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स, आप सबकी फेवरेट वाणी आकाशवाणी जोधपुर पर शुरू हो चला है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, तो फिर चलिए नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छी बात से, और वो अच्छी बात ये है कि न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। और ध्यान रखिए, न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए।
1: और मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए इस प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और इस सशक्त जो हमारा प्रोग्राम है उसके पीछे एक सशक्त टीम भी हमारे साथ हाजिर है, उसका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। ट्रांसमीटर पर हैं प्रकाश पवार, चंद्रराम पटेल, और श्रोताओं कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार और नरेंद्र सिंह राठौर। आज के अनाउंसर्स ऑन ड्यूटी कंसोल पर प्राइमरी चैनल पर हैं शैला, और एफएम पर हैं कविता। इस खूबसूरत कार्यक्रम की प्रस्तुति है और संयोजन है राजेश लामरोड का। और आज इस प्रोग्राम में जिन दो आवाजों को आप सुन पा रहे हैं वो उस सूत्रधार के रूप में मैं हूँ नेहा रांकावत
0: और न्यू नूतन सोनी।
1: और इस टीम के परिचय के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, तो लीजिए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, सफर किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी, और साथ ही साथ देखा जाए तो जिंदगी भी तो एक सफर ही है ना।
3: बिल्कुल। और इस सफर में जो हमें अनुभव मिलते हैं और जो एक यादों का खजाना वापस हम सफर करके जब पहुंचते हैं घर पे, तो वो एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। और वो जो अनुभव है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं समृद्ध करता जाता है। और एक बात भी कही गई है कि मंजिल से बढ़कर सफर का मजा होता है, और रास्तों में ही जिंदगी

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।

0: है कि मंजिल से बढ़कर सफर का मजा होता है और रास्तों में ही जिंदगी का असली पता होता है।
1: बिल्कुल, लेकिन सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का नाम ही तो नहीं होता। मुझे लगता है कि सफर का मतलब नए लोगों से मिलना, नए ख्यालात अपने साझा करना, उनसे रूबरू होना, अपने नए तजुर्बे हासिल करना और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करना। और शायद इसी वजह से हमें जो है नई चीजें सीखते रहना चाहिए, लोगों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और जिंदगी से उनके उसके सारे रंगों से हमें बहुत ही अच्छे से रूबरू होते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और ये जो सफर है ना नेहा, वो दुनिया को देखने का एक अलग ही हमें नया नजरिया दे देता है। और जब हम सफर तय करते हैं ना, तो जब पहाड़ों को देखते हैं, तो पहाड़ों की जो ऊंचाइयां होती है ना, वो हमें सपने देखना सिखाती है। और नदियों का जो कलकल बहता हुआ पानी होता है, वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना सिखाता है। और जो रास्तों की कठिनाइयां होती है ना, वो हमें पेशेंस और एक तरह से संघर्ष का जो एक महत्व होता है ना, वो सिखाता है।
1: बिल्कुल।

0: व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचता है। वो बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ही परेशान अपनी ज़िंदगी से। तो उसके गुरु ने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों परेशान हो तुम? तो वो बोलता है, मेरे जो जीवन में है समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं बहुत निराश रहता हूँ, कभी असफलता आती है, कभी लोगों की बातें मेरे बीच में मेरे दिमाग में आती रहती हैं, कभी भविष्य की चिंता मुझे सताती है, मैं थक गया हूँ इन सब से। तो तुम्हें क्या लगता है उसने क्या बोला होगा गुरु ने?
1: गुरु ने बस यही बोला होगा कि तुम बताओ कि तुम क्या ढो रहे हो, एक्चुअल में कर क्या रहे हो।
0: जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से गुरु गुरु तो उसके बात पर मुस्कुराने लग गए। उन्होंने उसे एक थैला दे दिया, थैला दिया और बोला कि इसमें कई पत्थर हैं, तुम इसे उठाओ, कंधे पर रखो और मेरे साथ चलो। और बहुत अजीब सी बात थी कि उन्होंने ऐसा उसको करने के लिए बोला। तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने जो व्यक्ति था अपने गुरु की बात मानता था,
1: उसमें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा।
0: होगा, बिल्कुल होगा। तो वो कुछ दूर तक अपने उसने बात मानी और मैं वो उस बोझ को उठाते हुए चलता रहा। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जो था थैले का भार उसको बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। उसके कंधे जो थे दर्द करने लगे। जाहिर सी बात है, दर्द तो होंगे। तो गुरु ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो व्यक्ति बोला कि बहुत भारी, अब और चला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो उसके गुरु ने पूछा, कहा कि इस थैले में रखे हर पत्थर पर एक नाम लिखा है, उसको पहले देखो। तो उस व्यक्ति ने उसको थैले को खोला, उसमें से एक पत्थर निकाला जिस पर लिखा था बीती हुई गलती। ठीक है, तो किसी पर दूसरों की राय लिखा था, दूसरा पत्थर उठाया तो उस पर लिखा था भविष्य की चिंता, किसी पर लिखा था असफलता का डर, ये सब लिखा हुआ था। तो गुरु ने उसको बोला, एक एक करके वो जो पत्थर हैं आप निकालते जाओ और उन्हें तुम्हें अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उस बीती हुई गलती वाले पत्थर को निकाल दिया, उसे थोड़ा सा बोझ थोड़ा कम फील हुआ। फिर उसने दूसरों की राय और भविष्य की चिंता वाले पत्थर भी निकाल दिए। अब तो थैला बहुत ज्यादा,
1: और ये वाला जो पत्थर होता है ना बड़ा भारी होता है
0: जी, दूसरों की राय वाला। हाँ, जो अब तो थैला क्या होना था, हल्का ही होना था। तो उसके गुरु ने उसको एक बात बताई कि ये जो जीवन है उसका सबसे बड़ा फलसफा यही है कि हम अक्सर जो है दुखों से नहीं बल्कि अपने उन्हें ढोने की आदत से जो है थक जाते हैं। अपनी बीती हुई बातें सोचते हैं, लोगों के विचार और आने वाले कल की चिंता हमारे जो है कंधों पर रखे उन पत्थरों की तरह हमें समझ आती है जिन्हें हम स्वयं उठाए रखते हैं।
1: और यानी कि नेहा, जब हम सफर शुरू करते हैं और एक्स्ट्रा लगेज ले लेते हैं जिन चीजों की हमें सफर में कहीं जरूरत भी नहीं होती
0: है, बस
1: हम ले लेते हैं उठा के कि चलो लगेज को भरना है हमें, तो उसी तरह से तुम कहना चाह रहे हो कि जिंदगी का जो सफर है उसमें भी हमें जो
0: जो भी हम थॉट्स जो है हमारे
1: बिल्कुल जिनकी जरूरत ही नहीं है उनको साथ में कतई नहीं रखना
0: जी
1: चाहिए।
0: हाँ, तो उसके जो गुरु ने उसको अंत में यही बात की थी कि जीवन का जो सफर है वो हल्का तब नहीं होता जब रास्ते आसान हो जाएं, बल्कि तब होता है जब हम अनावश्यक जो बोझ है उसे उतारना सीख जाते हैं।

0: दोस्तों, आप सफ़र कर रहे हैं और अगर अगर आपने सफ़र में अपने साथ जो सामान है, आपका लगेज है, वो काफ़ी सारा कैरी करके रखा है,
1: यानी कि ओवरलोडेड हो गए हैं।
0: बिल्कुल, तो क्या आप चल पाएंगे?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक रास्ते से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह जब हम ट्रेवल करते हैं तो सामान ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें भी हमें लगेज ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, बताती हूँ तुम्हें। एक कहानी है, एक व्यक्ति

0: डियर रेडियो लवर्स, हम सफर पे निकलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं, और हम चाहते भी हैं कि सफर में जो है हमें बहुत सारे लोगों का साथ मिले। ठीक उसी तरह से जिंदगी का जो सफर है उसमें भी हम सोचते हैं कि हमको बहुत सारे लोगों का साथ मिले, और वो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनमें से भी अपन चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हों जो हमारी खुशी में भी साथ रहे और गम में भी साथ रहे।
1: बिल्कुल, तो ज़िंदगी का सफ़र ही कुछ ऐसा होता है ना नूतन, कि वो कितना भी लंबा या फिर मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगता है कि सच्चे दोस्त अगर हमारे साथ हों रास्ते आसान लगने लगते हैं। और केवल हमसफ़र ही नहीं होते वे दोस्त, वे हमारे हर खूबसूरत लम्हे का या दुख के लम्हे के साथी होते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और जो हमारा स्ट्रेस होता है ना उसको एकदम से कम कर देते हैं, और जो हमारी एनर्जी होती है उसको एकदम से बढ़ा देते हैं दोस्त जो होते हैं।
1: बिल्कुल, और जो उसी राह में जब हमारे साथ वो चलने लगते हैं तो वो राह भी दिखाते हैं, कुछ हौसला भी बढ़ाते हैं, कभी खुद अपने अपनी मौजूदगी से अपनी थकान जो है वो मिटा देते हैं, उसको मुस्कान में बदल देते हैं। जब हमें मंजिल दूर लगने लगती है तब वो दोस्त जो होते हैं वो हमारे होप बनकर आता है और हमारे जो है मंजिल को करीब ले आता है।
0: दोस्त भी होते हैं इस सफर में, और एक होता है हम सफर, जिस
1: बिल्कुल
0: जो सबको बहुत प्यारा होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है, और उस हम सफर से उम्मीद की जाती है कि वो बस हमें जज ना करे, बस हम वो हमें सुने और बस हमें प्यार दे और प्यार से बातें करे, और इस सफर को बहुत ही जानदार और अच्छा बना दे, जिंदगी के सफर को।
1: बिल्कुल, तो पर ये बिताए गए जो पल होंगे उसमें छोटी मोटी नोक झोंक होती रहेगी, लेकिन हंसी मजाक भी होता बनता है, और अनगिनत यादें आपको उम्र भर की जो है वो दिल के किसी कोने में महफूज हुई मिलती हैं जब आपके साथ एक

0: और बिल्कुल श्रोताओं, आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा संवर जाती है जब आपको एक खूबसूरत हमसफर आपकी राह में मिल जाता है। और हमसफर वही होता है, वो नहीं होता जो सिर्फ राहों में आपके साथ चले, वो जबकि वो होता है जो आपकी खामोशियों को भी समझ ले, मंजिलें बदल जाएं। तो कोई बात नहीं, बस साथ चलने वाला अपना हो यही काफी है।
1: हाँ, और इससे जो है ना नेहा, रास्ते आसान हो जाते हैं जब कोई साथ चलने वाला मिल जाता है। और ये जो जीवन है ना, लंबा सफर है, इसमें कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी मुश्किलों की छांव होती है। तो ऐसे में एक अच्छा हम सफर जो होता है ना, वो हमारे जीवन को जो है बड़ा सुंदर बना देता है। श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और अब प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और कार्यक्रम में हम फिर से लौटेंगे 9:10 पर।
2: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉ मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, पीजी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझा

0: उठाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाईमाधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव आया है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
1: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार। 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें बातें करते हैं बहुत सारी और ढेर सारी जानकारियां आपको देते हैं और सुनाते हैं गाने भी।
1: बिल्कुल, और अब आपको ले चलते हैं इतिहास के कुछ पन्नों में। आज ही के दिन सन 1865 में अमेरिकी राज्य टेक्सास में दासता की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा हुई थी और इस दिन को आज जूनटीन्थ के रूप में मनाया जाता है। सन 1910 में आज ही के दिन पहली बार फादर्स डे मनाया गया था और ये आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के स्पोकेन नगर में हुआ था। सन 1963 आज ही का दिन 19 जून विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना टेरेस्कोवा ने अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर सफल वापसी की थी। और आज ही के दिन 1978 में लोकप्रिय कॉमिक कैरेक्टर गारफील्ड पहली बार अखबारों में प्रकाशित हुआ था।

श्रोताओं, हिंसा एक तरह का अपराध है और उसमें भी यौन हिंसा से बड़ा कोई अपराध नहीं। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, ये दिवस हर साल 19 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के जो पीड़ित होते हैं उनके प्रति एकजुटता व्यक्त करना और ऐसी हिंसा को एक तरह से युद्ध अपराध के रूप में पहचानने के लिए जागरूकता बढ़ाना और अपराधियों को जवाबदेह ठहराना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून को यानी कि आज ही के दिन इस विशेष दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय यौन हिंसा की रोकथाम पर सुरक्षा परिषद के ऐतिहासिक प्रस्ताव जो कि 2008 में आया था उस प्रस्ताव को याद दिलाने के लिए किया गया था। और बात करें इस दिवस के पहचान की तो समकालीन संघर्षों में यौन हिंसा यानी कि बलात्कार या यौन दासता इसका जो उपयोग अक्सर युद्ध की एक रणनीति के रूप में समुदायों को आतंकित करने और आबादी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये मानवता के खिलाफ एक तरह से अपराध है श्रोताओं। और युद्ध क्षेत्रों में जो जीवित बचे लोग होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उनके लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, कानूनी सहायता और सुरक्षित आश्रयों की आवश्यकता पर जोर देता है यह दिवस। और इस दिवस का उद्देश्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कड़े कदम उठाने की अपील करना है।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है ओक्रम इबोबी सिंह का, जो भारतीय राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये पद 7 मार्च 2002 को ग्रहण किया। 2012 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी को 60 में से 42 सीटें उन्होंने जीती थी। ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी हैं। श्रोताओं, ओक्रम इबोबी सिंह का जन्म अथोकपम माखालिकी थोबल जिला मणिपुर में हुआ था। वह अपने 5 भाइयों और 3 बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्होंने इम्फाल में डीएम कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और आज इनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।

दोस्तों मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में वक्त हो चला है काम की बात जानने का। और काम की बात ये है कि केंद्र सरकार ने दवाओं की सुरक्षा और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स रूल्स 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। जी हाँ श्रोताओं, इसके तहत शेड्यूल के की जो सूची थी उसमें सिरप शब्द को हटा दिया गया है और इस बदलाव के बाद कफ सिरप सहित सिरप आधारित दवाओं की बिक्री पर अधिक नियंत्रण लागू होगा और उनके निर्धारित दवा विक्रय नियम भी प्रभावी होंगे। शेड्यूल के तहत उन दवाओं को सूचीबद्ध किया जाता है श्रोताओं जिनमें कुछ नियामकीय प्रावधानों से छूट प्राप्त होती है। रूल 123 के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाओं को दवा बिक्री संबंधित कुछ शर्तों से राहत मिलती थी। अब सिरप शब्द को इस सूची से बाहर किए जाने के बाद सिरप श्रेणी की जो दवाएं थी वो इस छूट के दायरे में नहीं रहेंगी और स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से कफ सिरप के अनियंत्रित उपयोग और दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी भी अधिक प्रभावी हो सकेगी। और हाल के वर्षों में कुछ देशों में भारतीय निर्मित सिरप में जो कुछ दूषित तत्व पाए जाने की वजह से और बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव भी दिखा था, ऐसी घटनाओं के बाद में सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर अब अधिक सतर्कता हो गई है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, जंगल की खामोशी में जब हल्की सी आहट गूंजती है तो समझ लीजिए प्रकृति का एक अद्भुत शिकारी अपने कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेपर्ड की, यानी कि तेंदुए की, जो अपनी फुर्ती, ताकत और चतुराई के लिए जाना जाता है। तेंदुआ केवल एक वन्य जीव नहीं है श्रोताओं, बल्कि प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है। इसकी चमकदार खाल पर बने काले धब्बे इसे जंगल का सबसे आकर्षक जीव बनाते हैं। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में बेहद माहिर होता है और अपने शिकारी को भी पेड़ों पर ले जाकर सुरक्षित रख सकता है। यह एक ऐसा शिकारी है जो धैर्य, गति और बुद्धिमत्ता का एक तरह से अद्भुत संगम है श्रोताओं। जंगल की पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में तेंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण जीव है तेंदुआ, इसकी जो संख्या है वो अभी पाली और जवाई के आसपास बढ़ी है, और इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहे और क्या इसका प्रभाव है, इस पर चर्चा करने के लिए हम आज फोन आउट माध्यम के जरिए जुड़ रहे हैं कस्तूरी सुले से, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2019 बैच से हैं, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पाली डिवीजन से। तो आइए हम उनसे फोन आउट माध्यम से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि लेपर्ड्स की संख्या अभी बढ़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि हम सबके प्रयासों से ये लेपर्ड की संख्या अभी बहुत बड़ी है।
0: जी मैम, और ये संख्या कितनी बड़ी है मैम, हम इसको कैसे मापें?
1: अभी अगर हम देखते हैं तो वाटर होल सेंसस तरीके से तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल एक अनुमानित गणना करता है हर वन्य जीवों की, और वो ही हम एक बेसलाइन डेटा की तरह मानते हैं। हाउएवर इस साल राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार हमने हर प्रोटेक्टेड एरिया में साइन सर्वे, लाइन ट्रांजेक्ट और कैमरा ट्रैपिंग जैसे टेक्निकों से भी लेपर्ड की संख्या की गणना की गई है। और हम अभी देख सकते हैं 2022 में लगभग 30 लेपर्ड ही पाली जिले में थे और इस साल हमें लगभग 63 मिले हैं, तो चार
0: वाह
1: साल
0: मैम,
1: में उनका नंबर डबल हो गया है।
0: बहुत ही अच्छा मैम। और फ्यूचर में भी जो है इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है, उसके क्या कारण रहेंगे मैम?
1: बिल्कुल, अब अभी हम देख सकते हैं जो संख्या बढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें लेपर्ड को शेड्यूल 1 स्पीशी का दर्जा दिया है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसको वहां दिया गया है, जिसकी वजह से उसके हंटिंग या फिर उसके पोचिंग पे कंप्लीट बैन है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सजा हो सकती है उसके लिए, इसलिए लेपर्ड की हंटिंग अभी लगभग हमारे यहाँ बंद ही है।
0: बिल्कुल मैम,
1: दूसरी
0: ये
1: चीज है कि हाँ दूसरी चीज है कि जवाई जैसे क्षेत्रों में लेपर्ड की वजह से अभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ रही है, लोगों को इनकम का इनकम जनरेशन का एक सोर्स मिला है बिकॉज इको टूरिज्म वहां बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं और खुद भी लेपर्ड की सुरक्षा में काफी ध्यान दे रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम, ये बहुत मजबूत कदम है एक तरह से हंटिंग रोक देना।
1: बिल्कुल
0: और हमने सुना है कि इनके जो आराम का समय होता है रात में टॉर्च जलाने से, जो नाइट सफारी में जो लेपर्ड्स होते हैं और भी जो दूसरे वन्य जीव होते हैं, उन पर बड़ा मतलब प्रेशर पड़ता है, वो दबाव में आ जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ये तो आपके बात बिल्कुल सही है, जो लेपर्ड को जैसे कुछ लोग हैं वो अशोर्ड साइटिंग के नाम से उनको

0: मरी हुई बकरी डालना या फिर कुत्ते को बांध के रखना या रात में जाके उनके जो केव होते हैं उसके पास जाके टॉर्चेस जलाना, ये कार्य बहुत ही हिंस्रक और बहुत ही क्रूर कार्य मैं मानती हूँ। तो ये तो ना ही वन्य जीवों को डिस्टर्ब करता है बल्कि उनको ज्यादा एग्रेसिव या हिंसक बना सकता है। तो इससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने की बहुत बहुत बहुत संभावना होती है और
1: बिल्कुल
0: अपनी
1: मैम,
0: जगह छोड़कर वो जा सकता है, अपने उसके लेपर्ड के बच्चों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है कि वो आगे जाके मानव के बारे में बहुत ही गुस्से से देख सकता है।
1: हाँ, क्योंकि मानव के लिए तो एक मात्र मनोरंजन हो जाता है कि टॉर्च जला के उनको देखना, अपना मनोरंजन करना, लेकिन उस प्राणी के लिए बहुत ही ये मुश्किल हो सकती है।
0: और ये जो चीज है ये बहुत गंभीरता से देखी गई है। इसको जो मैंने आपको कहा था हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको हंटिंग की श्रेणी में ही माना जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर सा एक इलीगल कृत्य है और ये करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ी बड़ी सजा होती है।
1: बिल्कुल मैम, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम आपने उठाया है। और तेंदुओं और उसके शिकार की स्थिर आबादी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने क्या प्रयास किए हैं मैम?
0: सबसे पहले तो सुरक्षा और निगरानी हम रखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करे, इसके लिए हम दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे पास अभी वायरलेस सिस्टम्स आए हैं, कैमरा ट्रैप्स हैं, ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग लेपर्ड का करते हैं। इसके अलावा जो मूल कारण होता है कि जंगली जानवर बाहर आने का, जैसे पानी हो या फिर खाने के लिए बाहर आता है, मेटिंग के लिए बाहर आता है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वन क्षेत्रों में भी पानी की व्यवस्था हम करते हैं, जैसे नाड़ी निर्माण करना, एलिकट निर्माण करना, सोलर पावर्ड वाटर होल बनाना।
1: वाह,
0: इसके अलावा वृक्षारोपण और चारागाह विकास करने से उनका प्राकृतिक वास जो है वो और बेहतर बन जाता है, तो उनको बाहर आने के लिए ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं मिलता है।
1: वाह
0: और
1: मैम,
0: पिछले साल से हमने प्रे बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर भी बनाए हैं, मतलब जो शिकार प्रजाति है उनको बढ़ावा देने के लिए एक एनक्लोजर बनाया है।
1: वाह मैम, बहुत ही
0: इसके
1: सराहनीय
0: अलावा
1: प्रयास किए गए हैं।
0: बिल्कुल इसके अलावा वन्य जीवों के बारे में जागरूकता हम करते हैं और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि आपके आज के प्रोग्राम से भी बहुत जो दर्शक सुन रहे हैं उनके बारे उनको भी लेपर्ड के बारे में जागरूकता निर्माण हो जाएगी।
1: बिल्कुल मैम, और जो तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसका जो है इकोसिस्टम पर क्या संभावित असर होगा मैम?
0: देखिए तेंदुआ जैसे हम टाइगर को देखते हैं वैसे तेंदुआ एक अपेक्स प्रेडेटर प्रजाति है उसके उसके इकोसिस्टम में। तो जो हमारे शाकाहारी जानवर है जैसे हिरन है, खरगोश है, नीलगाय है, उनकी संख्या को वो कंट्रोल में रखता है। तो हम मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि हमें मुझे कई बार बोलते हैं लोग कि हमारा नीलगाय ने हमारा खेत खा लिया, जंगली सुअर आके हमारा खेत खा गए। बट एक जगह से मुझे ऐसा पता चला कि नहीं मैडम, पहले तो खाते थे बट अभी यहाँ पे लेपर्ड ने केव बना लिया है हमारे खेतों के पास में, अभी से जंगली सुअरों का आना कम हो गया है। तो ये हम देख सकते हैं कि ना ही सिर्फ इकोसिस्टम के लिए बट ये एक हमारे लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीव है क्योंकि ये पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बनाए रखता है लेपर्ड।
1: ओके, और तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी से मैम संभावित चुनौतियां क्या आ सकती है और इसके लिए क्या तैयारी है?
0: बिल्कुल, तो तेंदुओं की संख्या जितनी बढ़ रही है हम देख रहे हैं दुगनी हो रही है 4 सालों में, बट उतना वन क्षेत्र हमारा नहीं बढ़ रहा है, इसलिए उनको जगह की कमी महसूस होती है, शिकार की, पानी की ये कमी महसूस हो सकती है। और ये कमी महसूस ना हो इसके लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास कामयाब होने के बाद भी लेपर्ड जंगल के बाहर आ सकते हैं। और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वो गांव या आबादी क्षेत्र में आते हैं और वहां पे फिर मवेशियों का या फिर कुत्तों का ऐसे शिकार हो जाता है और उससे भारी नुकसान हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि जनहानि भी होती है, तो
1: हाँ,
0: ये
1: यानी कि
0: चुनौतियां
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: यानी कि जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी जो है तेंदुए कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे और प्रकृति का जो संतुलन है वो भी बना रहेगा मैम।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट
1: हाँ, और ये जो तेंदुआ है ना मैम, बड़ा ही जो एक शक्ति के साथ धैर्य और एक तरह से

0: इससे संतुलन बना रहेगा और प्रकृति के इस जो अद्भुत जो ये जो प्रहरी है ना, इसको बचाना मैम बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, और आप वो जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वन्य जीव और जो हमारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, शाश्वत जीवन शैली हम जो आज बोलते हैं, उसमें वन्य जीवों का भी उतना ही इस धरती पर अधिकार है जितना मानव का।
0: बिल्कुल
1: और
0: मैम,

0: जानकारियां लेके बहुत ही हमको जो है अच्छा लगा। और ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि जस्ट डबल इनका जो है संख्या हो गई है,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत योगदान रहा होगा मैम। और नमस्कार कार्यक्रम में हम जानकारियां तो देते ही हैं मैम, ये म्यूजिकल प्रोग्राम भी, हम म्यूजिकल ट्रैक भी इसमें प्ले करते हैं, तो
1: ओके
0: अगला जो ट्रैक है हम आपकी पसंद का जरूर बजवाना चाहेंगे मैम,
1: बिल्कुल
0: तो कोई
1: बिल्कुल
0: भी एक भी आपकी पसंद का एक गाना।
1: आप वो बजा दीजिए, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गजल।
0: वाह, आपका जो पसंद का गाना है वो भी एकदम नेचर से रिलेटेड है।
1: यस
0: मैम हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू।
0: थैंक यू मैम।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में वक्त हो चला है शुक्रवार की किताब खास किताब का सेगमेंट। हम आपके सामने आज किताब लेकर आए हैं, वो है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। जी हाँ श्रोताओं, ये एक उपन्यास नहीं है बल्कि स्मृति, इतिहास, संस्कृति और मानवीय नियति का एक विराट आख्यान है। गैब्रियल गार्सिया मार्केविज़ ने इस कृति को लिखा था। इस कृति के माध्यम से एक ऐसे संसार की उन्होंने रचना की है जहाँ यथार्थ और कल्पना एक दूसरे में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों के बीच की जो रेखा है, लाइन है, वो धुंधली पड़ जाती है। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें जो इंगित हुआ है थ्रू आउट, वो है एकांत, सॉलिट्यूड। यहाँ एकांत केवल आपका फिजिकल अकेलापन नहीं है बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक दूरी का भी ये एक संकेत है। बुएंदिया परिवार का इसमें प्रत्येक सदस्य दर्शाया गया है किसी न किसी रूप में अलगाव का अनुभव करता हुआ। वे प्रेम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, समाज में रहते हैं, फिर भी भीतर से अकेले रह जाते हैं। अब इसके माध्यम से गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ ने एक प्रश्न उठाया है कि क्या मनुष्य जो है वो वास्तव में कभी अपने अकेलेपन से मुक्त हो सकता है। इस उपन्यास में जो समय है वो सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि एक वृत्त की तरह घूमता रहता है। घटनाएं, नाम, उसका स्वभाव, उनकी त्रुटियां जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती हैं, रिपीट की जाती हैं। इससे ये थॉट उभर के आता है कि इतिहास जो है वो स्वयं को दोहराता है और मनुष्य हमेशा अपने अतीत से सीखने में असफल रह जाता है। और ये जो उनका नज़रिया है आधुनिक इतिहास और समाज की गहरी आलोचना भी करता है। इसमें मैजिकल रियलिज्म का एक खास प्रभाव देखने को मिलता है। मार्केज़ की इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ही यही है कि उन्होंने मैजिकल रियलिज्म का जो है एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। चमत्कारी घटनाएं इसमें कहानी में इतनी सहजता से आती हैं कि वे अस्वाभाविक नहीं लगती हैं आपको। ये शैली लैटिन अमेरिकी समाज की उस सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करती है जहां लोक कथाएं, मिथक, आस्थाएं और दैनिक जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैकांडो इसमें एक कैरेक्टर है जो कि केवल काल्पनिक एक जगह है जो कि काल्पनिक नगर नहीं होते हुए भी बल्कि एक संपूर्ण लैटिन अमेरिका का प्रतीक है। उपन्यास में सत्ता, संघर्ष, गृह युद्ध, विदेशी कंपनियों का हस्तक्षेप और आम जनता का जो शोषण है वो दिखाया गया है। लेखक इसमें संकेत देता है कि राजनीतिक शक्तियां अक्सर इतिहास को अपने अनुसार लिखती हैं जबकि जो आम लोग हैं उनकी पीड़ा भुला दी जाती है। इसमें स्मृति का एक विशेष महत्व भी दर्शाया गया है। जब लोग अपने अतीत को भूलने लगते हैं तब उनकी पहचान भी कमज़ोर होने लगती है। लेखक उससे ये संदेश देते हैं कि किसी समाज की संस्कृति और अस्तित्व की उसकी स्मृतियां जो हैं उसी से निर्मित होती हैं। हालांकि कहानी का जो केंद्र है वो एक बुएंदिया परिवार है लेकिन परिवार को संभालने और उसकी निरंतरता बनाए रखने में स्त्री पात्रों की भूमिका जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उर्सुला इसका जो एक कैरेक्टर है वो धैर्य, दूरदृष्टि और संघर्ष का प्रतीक है। कई आलोचक ये भी मानते हैं कि जहाँ पुरुष पात्र अक्सर भ्रम और महत्वाकांक्षा में उलझे रहते हैं वहीं स्त्रियाँ जो हैं इस उपन्यास की वो यथार्थ से जुड़ी हुई हैं, रियलिटी से जुड़ी हुई हैं। इस कृति की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही है और इस उपन्यास ने विश्व साहित्य में एक मील का पत्थर जोड़ दिया था। इसे न केवल लैटिन अमेरिकी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई गई बल्कि कथात्मक शिल्प, समय की अवधारणा और यथार्थ की प्रस्तुति को भी नए आयाम दिए और इसी साहित्यिक योगदान के कारण गैब्रियल गार्सिया मार्केविज़ को 1982 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से भी सम्मानित किया गया था।

0: श्रोताओं, आज जयंती है माधव राव सप्रे की, जो हिंदी के साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्य के लिए उपयुक्त अनेक प्रतिभाओं को परख कर उनका उन्नयन भी किया, यानी कि दूसरों का भी भला किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी। प्रखर संपादक के रूप में लोक प्रहरी और सुधीर साहित्यकार के रूप में उनकी भूमिका एक लोक शिक्षक की रही। श्रोताओं, इसके साथ साथ कोशकार और अनुवादक के रूप में भी उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत ही समृद्ध किया। श्रोताओं, सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है, यानी कि उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सप्रे जी ने मौलिक लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास के मूलतः मराठी में रचित दासबोध, लोकमान्य तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य और इसी के साथ चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा रचित महाभारत मीमांसा जैसे ग्रंथ रत्नों के अतिरिक्त दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों और पुस्तकों का हिंदी में बखूबी अनुवाद किया। श्रोताओं,
1: और श्रोताओं, आज श्री सुदर्शन अग्रवाल की भी जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1971 में राज्यसभा सचिवालय में कार्यभार संभाला था और 1981 तक आते आते उन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी भूमिकाएं दी थी, अपनी सेवाएं निभाई थी। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के महासचिव के सर्वोच्च पद पर पदोन्नत भी किया गया था। 12 वर्षों तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया और राज्यसभा से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया गया था। एक भारतीय सिविल सेवक श्री सुदर्शन अग्रवाल ने 2007 से 2008 तक सिक्किम की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था।

दोस्तों वक्त है फीफा की हाइलाइट्स जानने का। इस बार का जो फीफा विश्व कप है वो इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप है। पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 3 देशों में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको द्वारा, वो भी संयुक्त रूप से। जो अभी की हाइलाइट है वो फीफा विश्व कप 2026 में से है, मेजबान देश मैक्सिको से है, जिसने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को 1-0 से हरा कर न केवल मैच जीता बल्कि नॉकआउट चरण में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र गोल जो लगाया वो लुइस रोमो ने दूसरे हाफ में किया था और गोलकीपर राउल रेंगर की बेहतरीन बचाव ने मेक्सिको की जीत सुनिश्चित कर दी है।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत नेहा को और
1: नूतन सोने को।
0: नमस्कार।

ये था मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुत है पहली रचना मिश्री देवी चौहान की।

0: रहे कार्यक्रम लोक संगीत कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: संत मिलिया इतना टले।
0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं ये लोक रचना स्वामी मोहनदास की आवाज में।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत ये कार्यक्रम सुनते हैं इस अंतराल के बाद।
1: मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, सुगम संगीत की शुरुआत कर रहे हैं इस ठुमरी से, जिसे गाया है बेगम अख्तर ने।

गिरिजा देवी को अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी जोधपुर से कार्यक्रम है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं ये दादरा जिसे गाया है पंडित भीमसेन जोशी ने।

सी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत

फिल्म संगीत के शुरुआत में आपने सुना कुर्बान फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में। आइए अब सुनते हैं ये अगला तराना।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

परदेसी बाबू फिल्म का ये गीत है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और सीमा अनिल सहगल की आवाजों में। गीत हैं सुधाकर शर्मा का, संगीत आनंद राजानंद का।

होगी प्यार की जीत इस फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में। समीर का रचा तराना है, आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये मोहब्बत है इस फिल्म का शीर्षक गीत आपको सुनाते हैं अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीत देव कोहली का है, संगीत आनंद राज आनंद का।

लीजिए अब सुनिए, हमारा दिल आपके पास है इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत हैं जावेद अख्तर का, संगीत संजीव दर्शन का।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़।
1: ये है दिल जले फिल्म का गीत जावेद अख्तर का रचा हुआ। अनु मलिक का संगीत है, आवाज कुमार सानू की है।
2: वो है कौन?
3: दान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं तक। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत की शुरुआत में आपको सुनाते हैं सतीश देहरा की आवाज़ में ये लोक भजन रचना।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: लोक संगीत में लीजिए, आप सुनिए भुंगर खां को।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: लोक संगीत में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और राजलक्ष्मी की आवाज में ये लोक रचना।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: लोक संगीत के आखिर में आपको सुनाते हैं रणजीत लोहार की आवाज़।

रणजीत लोहार के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के शुरुआत में आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह को।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आइए अब सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में निदा फाजली का कलाम।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये आवाज है जसवंत सिंह की।

0: जशवंत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये सफर यहीं तक। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। दिन के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 63 लाख से अधिक लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़ चुके हैं, जिनमें करीब 30% महिलाएं शामिल हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस अवसर पर देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य में जयपुर सहित 7 स्थानों पर इन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आमजन से स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। गौरतलब है कि अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कुल 10 पदक जीते हैं। इन पदकों में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर और जयपुर प्रवास पर रहेंगे। श्री वैष्णव रविवार सुबह बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वे करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे बीकानेर के लालगढ़ से गुजरात के साबरमती के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचेंगे, वे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे तथा राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को भी रवाना करेंगे। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा होरमूस जलडमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। यह कतर से रस लाफान टर्मिनल से 62,370

0: मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आए हैं। ये पोत आज सवेरे दहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। ये कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक दबाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। सरहदी जिले जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों का सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों में ये विशेष सर्वे कराया जाएगा।
1: जितने भी 0 से 50 किलोमीटर की रेंज के रेवेन्यू विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहां पर एक सर्वे होना है जिसमें एनक्रोचमेंट की दृष्टि से यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका फंडिंग कहां से आया है, एनक्रोचमेंट है तो किस तरीके का एनक्रोचमेंट है, आबादी की क्या स्थिति है, खेती की क्या स्थिति है, वहां हमारे कितने पशुपालक हैं, क्या हमारी कैटल कौन सी वहां पर ज्यादा आबाद है, तो इस तरीके का एक जनरल सर्वे है जिसमें मुख्य हमारा ध्यान रहेगा एनक्रोचमेंट की स्थिति पर।
0: 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कल शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 एआई इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस है। इसका आयोजन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार संयुक्त रूप से कर रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कृषक बंधुओं को समर्पित कार्यक्रम कृषि जगत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं अरुण कुमार शर्मा से दिनेश राणेजा की बातचीत। विषय है जैविक तकनीकों से रासायनिक उर्वरक की बचत।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसु राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया खेती बाड़ी रजी का काम काज है आपा करे जहाँ खेत बचाओ अभियान रे अंतर्गत जैविक तकनीकों से रासायनिक उर्वरक की बचत किन तरह आपा कर सका। आज अपने साथ है अरुण कुमार शर्मा, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है काजरी जोधपुर सु पधारिया। अरुण कुमार जी राम राम।
1: राम राम सर, राम राम।
0: सगला सु पहली बात आवे सा के जैविक तकनीकों से रासायनिक उर्वरकों की बचत आप कर सका
1: जी।
0: सवाल वे के भाई जैविक तकनीकें कई कई हैं?
1: देखो साहब, जो भी हमारी ऐसी तकनीक है जो रासायनिक नहीं होती है, मतलब जो फैक्ट्रियों में नहीं बनती है, जैसे हमारी जो उर्वरक कहें वो यूरिया डीएपी ये सब फैक्ट्रियों में बनती हैं। जैविक तकनीक वो है जो किसान खुद कर सकता है और जिसमें कोई भी रसायन नहीं होता है, उन सभी तकनीकों को हम जैविक तकनीकें कहते हैं।
0: बात है कि किसान आपने जैविक पद्धति से आविष्कार करे
1: जी,
0: रासायनिक जी का उर्वरक जी का बाजार में मिले नहीं खरीदे।
1: किसान अपनी मेहनत सु और अपने आसपास जो चीजें हुए ना वी से वो बनावे अपना खाद।
0: तो अरुण कुमार जी, आज की जैविक तकनीक है तो इन्हीं जी की आवश्यकता है, आप किसान भाई ने क्यों महसूस हो रही है अबारे टाइम में?
1: हाँ देखिए, इसके दो तीन कारण है। एक तो ये है कि हमने इतना ज्यादा उर्वरकों का उपयोग करा तो हमारी जमीन जो है वो अब उसकी उर्वरता बहुत कम हो गई, तो हमको धीरे धीरे वापस जमीन को तैयार करना है। इसीलिए हमारा अभियान चला है खेत बचाओ, खेत को वापस अच्छा करो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ताकि हम यूरिया डीएपी का उपयोग कम करें और जैविक तकनीकों को अपनाएं ताकि हमारी जो भूमि है जो पहले जितनी उर्वरक थी वो वापस उर्वरकता के ऊपर जाए। दूसरा कारण ये है कि अभी हमारे जो जिस तरह से खाड़ी का संकट हुआ तो उससे हमारा जो उर्वरक का जो आयात था वो काफी डगमगा गया, तो उस हिसाब से भी हमको थोड़ी किफायत बरतने की जरूरत है। तो अगर हम उर्वरक का उपयोग करके के साथ साथ जैविक चीजों का भी उपयोग करेंगे तो हमारे

0: खेत की उत्पादकता बनी रहेगी।
1: कुल मिलान बाता है कि किसान भाई ने हमें जैविक खेती की तरफ चालना पड़ेगा
0: जी।
1: अमूमन किसान भाई दिमाग में और रहे कि भाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करा ला मिट्टी में डाला ला तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देना
0: जी। वो बात तो सही है क्योंकि इसका रासायनिक का एकदम तुरंत रिजल्ट मिलता है किसान को। मतलब अगर आपने यूरिया डाली है तो 5-6 दिन में सारा हरा हरा दिखता है, तो इसलिए और डालने में भी आसानी है, तो इसलिए किसान भाई थोड़ा सा इसके जो है एक तरह से इसको इसके लिए आदि हो गए हैं कि हम इस तरह की खाद डालें, रासायनिक खाद यूरिया डीएपी, ताकि हमको ज्यादा उत्पादन मिले। लेकिन उससे हमारे भूमि को बहुत नुकसान हो रहा है, उससे भोजन की जो गुणवत्ता है उस पर बहुत नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और साथ में किसान की लागत बढ़ रही है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमें अब रासायनिक के साथ साथ जैविक जो हमारे तकनीक है उनका भी उपयोग करना पड़ेगा।
1: अरुण कुमार जी, किसान भाई के दिमाग में आवे कि भाई जैविक तकनीक अपना काम में लेनी चाहिए तो आखिर तरह की ले सके?
0: हाँ, जैविक तकनीक जो है वो मुख्यतः दो तीन तरह की होती है। एक तो यह है कि साहब आप अच्छी खाद बनाओ, कंपोस्ट खाद बनाओ, जो गड्ढे में खाद बनाते हैं या गड्ढे के ऊपर खाद बनाते हैं जिसमें गोबर होता है, या इस तरह गोबर और खेत का कचरा इन सब से मिला के उनको सड़ा के खूब खाद बनाते हैं, वो होती है एक तकनीक। दूसरी तकनीक होती है कि आप बहुत बढ़िया कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं लाभदायक, उनका उपयोग करें, दूसरी तकनीक वो है। तीसरी तकनीक यह है कि हम कुछ इस तरह की वनस्पतियों को खेत में लगाएं ताकि हमारी खेत की उर्वरता बढ़ती रहे। तो ये तीन तकनीकें जो है जैविक तकनीक है जिसको हम अगर खेत में उपयोग करेंगे तो हमारा यूरिया डीएपी की लागत कम होगी।
1: हाँ।
0: और साथ ही किसान का खर्चा बचेगा, खेत की उर्वरता बढ़ेगी।
1: रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करता थका कंपोस्ट जी खाद किसान भाई काम में लेवे तो किन तरह से कर सके ले सके?
0: देखो, कंपोस्ट बनाना तो बहुत आसान है, गड्ढे में आप गोबर और जो भी खेत का कचरा है, जितने भी पेड़ों की पत्तियां हैं उनको मिला के 2-3 महीने में सड़ जाती हैं, बढ़िया कंपोस्ट बनती है। और कंपोस्ट के अंदर आपको पूरे 16 तत्व मौजूद होते हैं, जबकि हमारे यूरिया डीएपी में सिर्फ या तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, या पोटासियम वाली में पोटास होता है। तो पौधों को पोषक तत्व 16 पोषक तत्व मिलते हैं इसमें। कंपोस्ट में भी 0.5% नाइट्रोजन होती है, इतनी फास्फोरस होती है, तो मतलब हमारा अगर हम कंपोस्ट देंगे तो हमको यूरिया डीएपी बहुत कम मात्रा में डालनी पड़ेगी।
1: जैविक खाद महीने जो लाभदायक जीवन उभ्या करे इंडिया पर बात करा
0: जी,
1: तो एक तरह से रासायनिक जी का उर्वरक हुए उपयोग करने महीने सही सिद्ध हो सके?
0: हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, हम जो रासायनिक खाद डालते हैं वो उसमें से कुछ खाद तो है वो हवा के साथ उड़ जाती है।
1: हाँ?
0: या कुछ जमीन में चली जाती है। जिस इसमें के हम दो उदाहरण देते हैं, नाइट्रोजन जो है वो अधिकांश जमीन हवा में उड़ जाती है क्योंकि हमारा देश गर्म है। फास्फोरस का लगभग 10% पौधों को मिलता है, बाकी 90% जो है वो खेत में ही जम जाता है, वो पौधों को नहीं मिलता है। तो इसी तरह से पोटेशियम है, तो जिस तरह की जमीन होती है उस हिसाब से हमको अगर हम रासायनिक डालते भी हैं तो भी नहीं मिलता है। तो इसमें बढ़िया तरीका ये है कि हमारे कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं जमीन से ही निकाले गए हैं उन्हीं का हम उपयोग करें। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए एक अजैटोबैक्टर है, वो हवा की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करता है। इसी तरह से दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम का अगर हम बीज में उपचार करें तो वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसी तरह से फास्फोरस जो जमीन में पड़ा हुआ है इतना सारा, उसको उपलब्ध कराने के लिए एक PSB नाम से फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया वो काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। पोटेशियम के लिए भी है, जिंक के लिए भी है, सल्फर के लिए भी है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये बहुत कम लागत में हमको बाजार में मिल जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, सरकार भी उपलब्ध कराती है। तो इनका अगर हम उर्वरक के साथ उपयोग करेंगे तो हमारी उर्वरक की जो भी हमने डाला है वो एक तो उसकी उपलब्धता बढ़ेगी और दूसरा हमको फिर आखिर में हमें कम उर्वरक डालना पड़ेगा। तो हमें इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग जरूर करना चाहिए।
1: कुल मिलान बाता है सर, ज्यादा से ज्यादा जी की किसान भाई जैविक तकनीक अपनावे, आप बताना चाहो कभी और कौन सी जी की अड़ी तकनीक है जिनसे का रासायनिक उर्वरक है इनको प्रयोग है खासतौर से किसान भाई कम कर सके?
0: हाँ, देखो साहब, इसमें एक चीज है हरी खाद उन्हें बोले।
1: हाँ?
0: तो हरी खाद में वैसे तो जहाँ थोड़ा सा आपका पानी की मात्रा ठीक है वहां तो आप हरी खाद ढेंचे की खाद बनाते हैं, सनई की ढेंचे की खाद बनाते हैं, और जहाँ पानी कम है जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में वहां आप ग्वार की भी हरी खाद बना सकते हैं।
1: हाँ?
0: तो हरी खाद बनाने का तरीका ये है कि आप इन फसल को किसी को अच्छी घनी मात्रा में बोते हैं ज्यादा बीज से, और लगभग 45 दिन बाद जब इसमें फूल आ जाते हैं उसके बाद इसको जमीन में पलट देते हैं। तो इससे अगर आप 1 हेक्टेयर

0: हेक्टेयर में लगाया जाए तो करीब 30 किलो तक आपको नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरस मिलती है। तो हमारा आप ये देखिए कि इससे एक आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपकी यूरिया डीएपी की बचत हो रही है, साथ में जमीन की जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है, और कुल मिला के आपका बजट कम होता है, यूरिया डीएपी का खर्च कम होता है। जैविक तकनीक है वो आपकी किसान की मेहनत है, क्योंकि उसमें अपने को गोबर फ्री मिल रहा है गाय भैंस का, और साथ में जो खेत का कचरा है वो मिलाना है, मेहनत करके किसान उसको खेत में डालेगा, तो ये तो एक तरह से मुफ्त उपहार है जिससे जमीन की भी क्षमता बढ़ती है। हाँ। और साथ में हमको कोई लागत ज्यादा नहीं आती है।
1: अरुण कुमार जी, क्या ज्यादा से ज्यादा आपने किसान भाई ने खासतौर से जिनका खेती बड़े काम काज कर लिया है उन्होंने जैविक तकनीकों से रासायनिक उर्वरकों की बचत करनी चाहिए?
0: आपने बिल्कुल सही पकड़ा है मामला, तो इसी तरह से हमें अच्छी खेती करनी चाहिए, और अगर रासायनिक खाद को हम धीरे धीरे कम करते जाएं और जैविक खाद बनाते ज्यादा खेत में मिलाते जाएं तो एक दिन हमें रासायनिक खाद से पूरा छुटकारा भी मिल सकता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी शर्मा, आप किसान भाई ने जानकारी दी रही कि भाई जैविक तकनीकों से रासायनिक उर्वरकों की बचत है वे किन तरह से कर सके। राम राम सा।
0: राम राम।
2: कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने सीख दिलाओ। राम राम।
3: कृषक बंधु सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

जी आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम गणगौर।

0: बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
1: इमारत कितनी भी ऊंची और शानदार क्यों ना हो, पर तूफान सु बचाई राखे बिरी नींव और ठीक भी है, कोई भी परिवार कितो भी आधुनिक हो पर विने बिखेरण सु बचाई राखे बडेरारो आशीर्वाद।
2: बिल्कुल, इन्हीं विचार साथे स्वागत है सगली सखियारो कार्यक्रम गणगौर रमाइने, और साथे साथे आप साथे है आपकी दो सखियां
1: कोमल राठौर
2: और पूनम देवड़ा,
1: तो दोनों रा घने है थरकसु राम राम,
2: राम।
1: तो पूनम जी, आज रोज को कार्यक्रम है वो कोई उत्सव सु कम नहीं होने वालों है, क्योंकि उत्सव है अभी पीढ़ी रो जखा आपने चालनो सिखायो और वो सम्मान है बहाता रो जकारी आंगलियां पकड़ आज आप मुकाम तक पहुंचे हाँ। तो चलो शुरुआत करा आज रे कार्यक्रम री, अपना घर और समाज रा अनमोल रतन अपना बुजुर्ग सु, और आज रो खास गणगौर कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है माटी रा संस्कार
2: बडेरा रो सत्कार।

0: बिल्कुल पूनम जी, और आज रही टेम रे मायने आपा इतना व्यस्त हो जावा कि घर रा जका कोना रे मायने आपा ना जका बड़ा बुजुर्ग है, दादी सा दादो सा, या अपना माता पिता, नाना नानी है, कोई भी है, तो अपना जका आपनो रास्तो देख लिया होया करे। कदी आप सोचियो कि वाने आपा सुकाई चीज है, कोई महंगी गाड़ी तो कौन चीज है, बड़ो बड़ो सो घर भी वाने कौन चीज है, वाने चीज है बस थोड़ो सो भगत, थोड़ो सो प्रेम और थोड़ो सो सम्मान। अब आपा सोच रहे हैं कि आ बात है ना तो सब कहे, पर आ बात है जे कि बहुत जरूरी हुआ करे, क्योंकि कोई परिवार में बुजुर्ग भी अगर कोई कोई बात रे वास्ते आपने बार बार टोक लिया है तो वह बात भी सही है, क्योंकि भी आपने सही रे वास्ते टोकिया करे। आपा कहीं आपा गुस्सो करने लाग जाओ कि अपन बार बार क्यों समझा रही है, पर आ बात सही हुआ करे, भी आपने जो भी राय देवे बात सही हुआ करे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल, और कहवे कि घर मायने बुजुर्गारी मौजूदगी उन वट वृक्ष की तरह होया करे जो पूरे परिवार ने आपकी ठंडी छावरे मायने समेटने राख्या करे।
0: बिल्कुल
1: इनारे जीवन रो अनुभव, इनारी सीख और इनारी मुड़कते मुंडेरी छवि समाज री असली पूंजी होया करे। परिवार रे मायने बुजुर्गारी ठोड सगला सु ऊंची और आदर सम्मान होया करे। वे केवल उम्र रे मायने मोटा नहीं होया करे बल्कि पूरे परिवार री जड़ होया करे। ज्या बिना जड़ रो रूखड़ो नहीं टिक सके, व्या बुजुर्गारे बिना परिवार नहीं चल सके।
0: बिल्कुल
1: मुश्किल वक्त रे मायने वे बड़ री ढाल री तरह है जिको खड़ा हो जाया करे। जिंदगी रा कष्ट देखियोड़ा होवे, सुख भी देखियोड़ा होवे, और उन्होंने करे हर समस्या रो है जिको समाधान मिल जाया करे।
0: बिल्कुल समाधान मिले। और इन्हें तो कहवे कि अनुभवारी जिकी खुली किताब है, बे अपना बड़ा बुजुर्ग या करे, चकर हर पन्ना अपने जिंदगी में जीनो सिखावे, अनुभव रो खजानो अपा वाने माना, और कोई भी उतार चढ़ाव हुए जका बे अपना जीव आपरा जीवन में देखेड़ा हुआ करे, इन वास्ते अपने बुरा टेम रे मायने सही मार्गदर्शन भी करे और एक सलाहकार रूप में अपनी मदद करे। और कोई भी काम काजी महिला है या बच्चा ने भी है जो को अगर वे है वहां के भरोसे आपा छोड़ सका, और अपनी अगर भाषा री बात करा, अपनी परंपराएं री बात करा, अपने इतिहास री बात करा, तो वे आपने परंपराएं बतावे, इतिहास रे बारे में बतावे जका ने आपा भूलता जा रही हाँ, तो वह जका अपना बुजुर्ग है वे बार बार अपने याद दिलाता रहे कि अपनी ए परंपराएं ही, अपना ए रीति रिवाज हा, अपना ओ इतिहास हो।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल, वे संस्कृति रो मतलब खजानो हो सके, आप यू कह सका मैंने कि संस्कृति रो खजानो और संस्कार जी की नींव है वही अपने बताया करे है। और
0: बिल्कुल
1: क्योंकि देखो एक बात मैंने याद आ रही जब आप की हो कि भाई दादा दादी रीति रिवाज अपन समझो, तो मारे भी जब दादी से आनी तो कोई भी तीज त्योहार आ तो कोई भी उनसे जुड़े जो भी रीति रिवाज रस्म होता घर रहे मायने, तो सब वे पहली से सभा ने ऑर्डर दे देता कि भाई वो त्योहार आ रही है तो आपने इन संबंध में आज तैयारी करने रखनी है घर रहे मायने। तो कुल मिलाना जब अपन तैयारी करता तो एक अलग ही अनोखो आनंद होता। आजकल त्योहार में वह रौनक देखने को नहीं मिले।
0: कौन मिले। और एक चीज और आपा नोट करा ना, तो आ चीज है कि जब भी आपा मुसीबत में हुआ था सबसे पहले आपा ने बुजुर्गारी याद आवे, चाहे पहले आओ चाहे मत आओ, पर मुसीबत रे टाइम में आपा ने याद आवे, क्योंकि वे आपा ने सही सलाह देवे और सही राय देवे। और कोई भी बुजुर्ग री जकी टोक है या कोई मार्गदर्शन है, युवा ने जो गलत रास्ता पर जाने वास्ते रोके, नशा री लत हुई या कोई अपराध है, विने बढ़न सु भी है जका बुजुर्ग है आप बहुत बड़ो योगदान देवे। तो पूनम जी कुल मिलार बात करा, बुजुर्ग जगह है बे घर रे मायने जो

0: छायादार पेड़ हुआ करे, वीर जिया हुए जकारी छाव रे मायने पूरो परिवार सुरक्षित रहे, फलतो फूलतो रहे।
1: बिल्कुल, तो आपनो फरज है कि आप उनारी सेवा करा और उनारा आशीर्वाद लेवा और थोड़ो सो वक्त उनारे वास्ते निकालना।
0: बिल्कुल।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो कोमल, जब बड़ा बुजुर्ग बात कर ही रहा तो सखिया ने एक फोन आउट बातचीत सुना था वेणा संबंधित।
4: बिल्कुल।
3: तो आज के कार्यक्रम में फोन आउट रे माध्यम

0: आमंत्रित हैं डॉक्टर आभा चौधरी, जो वृद्धावस्था देखभाल और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विशेषज्ञ है। वे वृद्धावस्था देखभाल, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता और परामर्श, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और हाशिए पर पड़ी महिला वर्ग कौशल विकास के वास्ते पूरे भारत में मैंने व्यापक रूप से काम कर रहा है। तो सुनावा आपने कोमल राठौड़ री इनासु बातचीत।
1: આપણે ઘરે આંગણારા બુઝુર્ગ બે દિયા હે જકા ખુદ જ ઘર પૂરા ઘર ને ઉજાસ દેવે પણ આજ રા ભગત રે માઈને કદે કદે ઓ દીવો હવારે ચોંકા સુ કમજોર પડન લાગ જાવે ઓર આ બુઝુર્ગ ને સંભાળન વાળી ઓર સેવા કરણ ઓર વાને અપનાય દેવન રો ભીડો ઉઠાયો હે આપણે સાથ જુડેડા આજ રા મહેમાન જકા હે ડોક્ટર આભા ચૌધરીજી જકા આજ આપણી સંસ્થા રે માધ્યમ સુ બુઝુર્ગારી લાઠી બન્યા હે જકા બુઝુર્ગારે અધિકાર વાળી સેહત ઓર સામાજિક સુરક્ષા રે વાસ્તે કામ કર રહ્યા હે સબસે પહેલી તો આભાજી આપરો ઘણી राम राम और आप लोग स्वागत।
2: धन्यवाद, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और सभी सुनने वालों को राम राम।
1: आबा जी, सबसे पहले आपने वही पूछनी चाहवा कि आज की बुजुर्ग की बढ़ती उम्र है, इन मायने शरीर की तकलीफ आ रहे साथ साथ मन की बीमारियां जी है, मानसिक स्वास्थ्य माथे भी असर पड़े और आज का टाइम ने देखा तो इन मायने जगह बुजुर्ग है बारे जो अकेलोपन हो गयो या डिप्रेशन हो गयो वो क्यों बढ़ते जा रही है?
2: ऐसा है कि भारत में इस समय लगभग 15 करोड़ के आसपास बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, और इसमें जो एक बहुत बड़ी संख्या है वो रूरल एरियाज में, गांव के इलाकों में रहती है। और इसमें ऐसा है कि पहले परिवार संयुक्त परिवार होते थे, सब लोग इकट्ठे साथ में गांव में रहते थे, पर अब शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए और आगे व्यापार के लिए जो ज्यादातर युवा हैं, बच्चे हैं, वो गांव से पलायन करके शहरों की ओर जा रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर युवा अकेलापन महसूस करते हैं, माइग्रेशन जो है गांव से शहरों की ओर बढ़ती जा रही है, और खेती जमीन और अपना बाकी घर संभालने की वजह से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वो पीछे गांव में छूट जाते हैं। ये रही गांव की समस्या। और शहरों में अकेलापन और एकाकीपन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, आपस में बातचीत होती नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता लोगों में रहती है और इस वजह से एक कटाव लोगों में बढ़ता जा रहा है। और अपनी स्वास्थ्य कमजोर होने की वजह से भी, ज्यादा एक्टिव होने की वजह से भी लोग आपस में मेलजोल थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये जो समस्याएं हैं आजकल बुजुर्गों के लिए, इनका समाधान ढूंढना बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल, आप समाधान की बात कर ही रही हो तो इन रमाइन जो को घर परिवार वाला है वे क्या मदद कर सके?
2: घर परिवार की जो भूमिका है, देखिए भारत एक परिवार प्रधान देश रहा है शुरू से ही। हमारे जो भी रामायण है, महाभारत है, हमारे वेद है, पुराण है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो अभी भी देखिए, आप अगर राजस्थान में भी बोलते हैं तो आप उनको सा करके संबोधित करती हैं, जी करके संबोधित करती हैं, और अभी भी हमारी संस्कृति में जब सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं तो राम राम सा पैर छुए जाते हैं वरिष्ठ नागरिकों के, उनको देवी को माँ का स्वरूप कहा जाता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उन्हें देवता तुल्य माना जाता है। तो परिवार की इसमें तो सबसे अहम भूमिका है, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमारा संरक्षण किया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, उनके प्रति हमारी जवाबदेही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उस जिम्मेदारी से आज का युवा, बच्चे, बहुएं, बेटियां पीछे नहीं हट सकते।
1: बिल्कुल आबा जी, बिल्कुल सही की हो आप। और देखो, अपन घनी बार वो भी देखने में आवे कि जब काम का जी बुजुर्ग हुए या कोई नौकरी कर रहा हुए और जब वे रिटायर्ड हो जावे तो वीरे बाद में समाज सु कटे कटे रहे, तो विन टाइम माने समाज जो की मुख्य धारा है विसु जोड़ियो रखने वास्ते, यानि की एक्टिव एंजिंग है, सक्रिय बूढ़ा को है, इरे अवधारणा किया समझा सका, इन्हें सब है जगह किया समझ सके?
2: मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो स्वयं बुजुर्ग की की है, वो जैसे कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो अगर अपने आप को कमजोर ना समझें, बेकार ना समझें, बूढ़ा ना समझें, तो क्या 104 साल के एक जो मैराथन धावक थे कनाडा में, उनकी हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई, जो व्यक्ति 104 साल की उम्र में मैराथन दौड़

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, और भी देखिए किसान हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, क्या 60 साल की उम्र में किसान रिटायर हो जाता है? नहीं। तो इसको जो प्रोडक्टिव एजिंग कहा जाता है, सक्रिय वृद्धावस्था या स्वस्थ वृद्धावस्था की जाती है, उसकी शुरुआत बुजुर्ग से ही होती है। यदि आप स्वयं को सक्षम समझें, स्वस्थ समझें और समाज के लिए उपयोगी समझें, तो आपको कोई घर में नहीं बैठा सकता। आसपास के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, सामाजिक संगठन है, आप वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, अपने हम उम्र लोगों के साथ कोई ना कोई ग्रुप बनाइए।
0: बिल्कुल। और आपने जो संस्था है बुजुर्ग वास्ते कौन कौन सा काम है जो को करिया करे, और आपका जो को तजुर्ब है बिन हिसाब से गांव रेवन वाला जो बुजुर्ग है, माने सेहत से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसकी रो सामना करना पड़े?
1: सन 2000 में मैंने लगभग 26 साल पहले, एग्जैक्टली 26 साल पहले, उत्तराखंड के छोटे से गांव गढ़वाल में मैं वरिष्ठ नागरिक जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करती थी। और वहां पे मैंने देखा कि वो गांव में जा जंगल में जाती हैं, खेत में जाती हैं, 12-12 घंटे काम करती हैं, और उनको उचित स्वास्थ्य सेवाएं या उचित उनको जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। तो मेरे मन में तब आया, और अनुग्रह संस्था मैंने सन 2000 में शुरू की, और पिछले 26 वर्षों में हम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, ऐसे कई राज्यों में हम काम करते हैं, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, अकेले रह गए हैं, या उनके लिए कोई भी और सुविधा प्राप्त उन्हें नहीं हो पाती है। तो अनेकानेक कार्यक्रम हम भारत सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको देने वाली सुविधाएं, रियायतें, सब जानकारी उन तक हम पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल। और बात अगर आप बुजुर्ग अनुभव भी करा तो वो भी अपनी सफलता में कई काम आवे, तो इरो लाभ है जो कि आज री पीढ़ी किया उठा सके, या फिर आपका कोई एडो उदाहरण है जैसे जो बुजुर्ग जको है वो जुवान टाबरा रो सचो मार्गदर्शन करियो होवे?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर युवा पीढ़ी का सटीक और लाभकारी मार्गदर्शन बुजुर्गों द्वारा किया जा रहा है। हमारे कितने सम्मान केंद्र, स्वाभिमान केंद्र, जैसे मैंने बताया, अनुग्रह के चल रहे हैं, तो हमारा जो प्रयास है वो है अंतर पीढ़ी, माने इंटर जेनरेशनल बॉन्डिंग। जो पहले हम अपने नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा के साथ एक परिवार इकट्ठे बैठ के रामायण सुनता था, कथाएं सुनता था, या दोनों पीढ़ियां साथ में त्योहार मनाते थे। सारे देखिए, आपके यहाँ तीज होता है और कितने त्योहार होते हैं, तो उसमें क्या बुजुर्ग महिलाएं, नानी दादी, सास, क्या सारे जो हमारे पुराने एक ट्रेडिशंस थे, हमारे संस्कार थे, तो वो क्या आगे पीढ़ी को वही तो पास ऑन करती थी? आप अगर घर की वरिष्ठ नागरिक महिला का रोल लीजिए, तो आज भी पाचन में आपको कोई भी कुछ सामग्री घर में बनानी हो तो आप सबसे पहले फोन अपनी माँ को ही करती हैं, या अपनी सासू माँ को ही करती हैं। वही तो सब बताती हैं कि किस प्रकार से पूजा हो, अनुष्ठान हो, और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि खेती बाड़ी में किस तरह से हो। ये जो सारी जानकारी है ये वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा ही तो मार्गदर्शन मिलता है, तो वो आगे अपनी कौशल को, अपनी नॉलेज को आगे युवा पीढ़ी को ट्रांसफर करते ही हैं। उसके बिना तो आप ये लगाइए कि बिना पन्नों की किताब हमारी डिक्शनरी और हमारा एनसाइक्लोपीडिया तो वरिष्ठ नागरिक ही हैं।
0: और आप जो वृद्धावस्था विज्ञान विशेषज्ञ होने साथ लैंगिक मुद्दारी भी आप जानकार हो, तो एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग महिला की जो की तकलीफ आया भी मायने बुनियादी फर्क कहीं होवे?
1: ये रेखांकित करना बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष का बहुत मुश्किल है। देखिए, दोनों की जो उम्र बढ़ती है, दुख तकलीफ तो शारीरिक और मानसिक दोनों को ही होती है। समस्याएं और एकाकीपन लगभग समान रूप से दोनों को ही प्रभावित करता है। पर महिलाओं, क्योंकि देखिए, मैंने जो पीएचडी की करीबन 24 साल पहले, मैंने वरिष्ठ महिलाओं पर ही शोध किया। करीबन 1000 महिलाओं को मैंने उनका इंटरव्यू लिया, और करीबन 200 गांव में मैं गई गढ़वाल के, और वहां पे मैंने उनको स्टडी किया कि

0: उनकी विशिष्ट परेशानियां क्या हैं। पूरी उम्र पहले पति पे और फिर बच्चों पे निर्भर रहती हैं। उनको थोड़ा बहुत खर्चा के लिए, दवाई के लिए भी अगर पैसा चाहिए होता है तो वो उनके सामने ही निर्भर होती हैं। अपनी अपनी इनकम का सोर्स पेंशन के अलावा वरिष्ठ नागरिक महिला के पास बहुत ही कम होता है। दूसरी प्रॉब्लम, अपनी सेहत के प्रति वरिष्ठ नागरिक महिला बहुत उदासीन होती है। समय पर भोजन ना करना, समय पर दवाई ना लेना, कैल्शियम ना लेना, आयरन ना लेना, बढ़ती उम्र के साथ जो उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो ना लेना, पहले परिवार को वो आगे रखती है, उनका भोजन, उनका पानी, उनकी देखभाल, 12-12 घंटे उनकी देखभाल में लगी रहती है, अपने लिए समय नहीं निकालती, तो वो केयर गिवर ही बनी रहती हैं सारी उम्र। और जब 70 साल की हो जाती हैं तो फिर जोड़ों का दर्द या बाकी चीजें उन्हें सताती हैं। तो सबसे मेरी ये अपील रहेगी कि आप अपनी स्वयं सहायता समूह बनाएं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, अपने लिए बचत करें और अपने उम्र की महिलाओं के साथ बाहर जरूर कुछ समय निकालें।
1: बिल्कुल, और आप संस्था रे जब इतना साल रे सफर रे मायने कोई एड़ी घटना या कोई एड़ो बुजुर्ग जगह री कहानी आपरे दिल रे ज्यादा पास में हुए जो को आपने काम करने की नई प्रेरणा दी हो?
0: जी बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहानी जरूर बताती हूँ, क्योंकि 1999 के दिसंबर में और घोर ठंड में जब मैं 8000 फीट की ऊंचाई पे एक गढ़वाल के गांव में, टिहरी गढ़वाल के गांव में, मैं शाम को अपना शोध कार्य करके अपनी वापस बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, तो मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं अपनी पीठ पे कम से कम 10-15 किलो का वजन का लकड़ी बांध के, बिल्कुल वो दोहरी हो रही थी, इतना बोझ था, और वो चली जा रही थी। तो धीरे धीरे हम भी उनके साथ चल पड़े धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ। तो फिर मुझे लगा कि इतना बोझ है ये अम्मा कैसे उठा रही होगी। तो मैं शहर से आई थी, इतना तो हमें जानती नहीं थी, तो हमने उन्हें कहा कि अम्मा जरा लाइए, हम आपके हाथ लगा दें। तो वो दोनों हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम इसका आधा बंडल भी नहीं उठा पाओगी बेटा, हम तो ये इसके आदि हो गए हैं, हम तो पिछले 20 साल से 25 साल से ये कमर पे लाद के भूसा और ये लकड़ी, हम तो ये अपने गांव जा रहे हैं, हम तो चले जाएंगे। तो हमने कहा कि अरे आप आराम क्यों नहीं करती हैं, आप ये इस उम्र में भी ये काम क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमारी घर में इज्जत और हमारा स्थान बना हुआ है। जिस दिन हम काम छोड़ के बैठ जाएंगे, दूसरों पे निर्भर हो जाएंगे और रोटी रोटी के लिए दूसरों पे मोहताज हो जाएंगे, तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारा आदर सम्मान खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये बात उनसे सीखी कि अपने को एक्टिव रखना, स्वस्थ रखना, सक्रिय रखना, चाहे 80 साल की उम्र हो। देखिए, हम लोग अभी योग दिवस मनाएंगे तो उसमें हम हजारों वरिष्ठ नागरिकों को ये प्रेरणा देंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में हम नियमित योग करें, संयमित आहार लें और समय समय पर डॉक्टरी चेकअप करवाएं, और परिवार में, देखिए परिवार में उतनी ही इंटरफेरेंस करें जितने बच्चे बर्दाश्त करें, अपनी अपनी हॉबीज को हम कल्टीवेट करें। ये सब चीजें मैंने पहाड़ की महिलाओं में, क्योंकि मैं पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रही हूँ, तो उन महिलाओं से मैंने ये सब चीजें सीखी।
1: बिल्कुल, और आज की जुवान पीढ़ी है जो की अपनी व्यस्त जिंदगी रे मायने अपना माँ बाप ने, दादा दादी ने भगत कौन ही दे पा रहा, उन्होंने आप एक विशेषज्ञ और समाज सेविका रे नाते कहीं सीख के सलाह देनी चाहूला?
0: देखिए, ये आपको बताना चाहती हूँ अनुग्रह की चेयरपर्सन और एक समाज सेविका के रूप में कि वरिष्ठ नागरिकों को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, और वो विशेषकर युवा पीढ़ी से। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वृद्ध जनों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उसके प्रति जागरूकता दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो उसके अंतर्गत हम दिल्ली और बाकी राज्यों में भी हम कार्यक्रम करते हैं ताकि परिवार के सदस्यों को ये बताया जाए कि वरिष्ठ नागरिक बेकार नहीं है, रिटायर इज नॉट यूजलेस, ठीक है, तो हम लोग उनकी सतत सहभागिता करें, सतत समावेश हो, अंतर पीढ़ी जो इंटर जेनरेशनल गैप है उसको

खत्म हो, इसके लिए हमें कई योजनाएं बनानी है और उनके अनुभव और कौशल को हमें रोजमर्रा उनकी सीख को हमें उनका लाभ उठाना है। तो हम अगर वरिष्ठ नागरिक एक वृक्ष की तरह है, उनकी छाया, सुरक्षा, शीतलता और उनका फल हमें चाहिए, तो हमें युवा पीढ़ी से ये विशेष अनुरोध करना होगा कि एक दिन आप भी बुजुर्ग बनेंगे। ये

0: आएगा। तो कर्म किया हुआ कहते हैं ना वापस आता है। तो ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में आज से ही सिखाना जरूरी है। जो माँ बाप बच्चों के सामने व्यवहार करेंगे वही वो आगे चल के आपके साथ व्यवहार करेंगे। यही मेरा संदेश है कि बोझ नहीं है बुढ़ापा, ये एक ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा वरदान है जो समाज और देश को आगे तक अग्रसर करता ही है।
1: बिल्कुल सही है डॉक्टर आभा जी। आज आप बुजुर्गरी, सेहत बारी, मानसिक स्थिति बारी, कानूनी अधिकार माते जी की गहरी जानकारी दी हो, बस सबारे वास्ते ही खासी मददगार साबित वेला। तो आभा जी, आज आप रो कीमती बगत निकालो जोधपुर आकाशवाणी सु जुड़िया और बुजुर्ग सु जुड़ी बढ़िया जानकारी भी दी। इन वास्ते आप रो पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ सु बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपका, आपकी पूरी टीम का, जोधपुर आकाशवाणी का और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रकट करती हूँ।
2: तो सखिया आभार आपा सुनी कोमल राठौड़ री फोन रे माध्यम सु बातचीत डॉक्टर आभा चौधरी सु, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्धावस्था और महिला सशक्तिकरण रे क्षेत्र रे मायने विशेषज्ञ है।

0: या अल्जाइमर की शुरुआत किया करे। और
1: हम्म,
0: एड़ा टाइम आते आपने गुस्सो नहीं करना चाहिए, बल्कि विन टाइम आते वाने प्रेम सु समझाओ, वाने साथ री जरूरत हुआ करे, क्योंकि दवाइयां सु ज्यादा किया करे नहीं कि दुआ है जकी काम आवे। तो जद वारा बच्चा पढ़न या नौकरी करने लाग चले जावे तो वहां में अचानक सु खालीपन आ जाया करे, अचानक सु उदासी वार माइन आ जावे, जिन्हें एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कियो जावे। और कई बार अपना जका बुजुर्ग है बे रिटायरमेंट रो जको मतलब है वो विन अंत माने, या फिर पन आ जकी एक चीज हुई अगर वह एक नई परेरी शुरुआत मानी जाए। वाने क्यों कि आप रो जको अधूरो शौक है, जिया बागवानी है, कोई ने लिखनो पसंद हुए, कोई ने पेंटिंग, कोई संगीत, वाने शुरू करने रो जको मौको है वो वाने देव, वाने निराश मत हो, वंदो वाने हमेशा प्रेरित करो।
1: बिल्कुल सही किया कोमल। इन दौरान थोड़ा मानसिक तनाव ज्यादा हो जाया करे, तो उन
0: बिल्कुल
1: मानसिक तनाव ने दूर करने वास्ते आप लोगों मेल मिलाप कर सको हो, आपने जो भी पसंदीदा आपने जो शौक है वह ना आप पूरा कर सको इन समय, और थोड़ी सी कसरत शरीर ने जरूरी होया करे, तो हल्की फुल्की जो कसरत है वह आप कर सको, और खाना में भी आप हल्के थोड़ा हल्को भोजन लो तो वो भी शरीर वास्ते फायदेमंद रहा करे। समय समय पर डॉक्टर जांच कराता रहो, बीपी बीपी चेक कराता रहो, तो वो भी आप वास्ते थोड़ा सही रहेला।
0: बिल्कुल। और आप हम उम्र जका लोग है, वांग साथे बैठो, कोई लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लो, या कोई भी एक्टिविटी को जकम आप इंटरेस्ट रखो, वीर मायने आप है जो को आगे बढ़ सको। साथ ही देखो सबू बड़ी चीज़ आ हुई करे कि घर बुजुर्ग है वारी देखभाल जको एक सदस्य री जिम्मेदारी हुई करे, पर पूनम जी एडो बिल्कुल नहीं है। एक पौधा ने हरो भरो रखने वास्ते घर हर सदस्य अगर भी में थोड़ा थोड़ा पानी डाले तो वो जो को पौधो है वो अच्छी तरीका से खिल सके। तो भी हर एक सदस्य री जिम्मेदारी जिम्मेदारी है कि वे आपरा स्तर रे माते बडेरा बुजुर्ग रे जकी देखभाल है बा करे।
1: बिल्कुल सही क्यों, और बुढ़ापे री साथी होया करे लाठी, और घर रा टाबर बुढ़ापे री असली लाठी होया करे।
0: बिल्कुल
1: टावरा रो पहलो कर्तव्य है कि वे अपने माँ बाप रे दादा दादी री भावना री आदर करे, छोटी मोटी जरूरत तो ध्यान रखे, इनमें बीमारियां भी घेर लिया करे, तो ई वक्त वे दवाई देनी, डॉक्टर ने दिखाणो, उन्हारे हाजमे रे मुजब चोखो खाणो खिलाणो, इन टाइम वे पैसा नहीं बल्कि अपना रे साथ री जरूरत होया करे, और वो अपना रो साथ है जिको आप अपना वक्त निकाल थोड़ो सो और वे दे सका।
0: बिल्कुल दे सका। और जत बाद युवा री आवे तो युवा रा कंधा जका है वो बुजुर्ग रो सबसे बड़ो सहारो बन सके, या कोई भी तकनीकी रा काम में या कोई भी कागजी काम रे मायने वे मदद कर सके। बैंक रो काम हुई हो, कोई डिजिटल पेमेंट हुई हो, ऑनलाइन दवाइयां मंगानी है, कोई भी देखो आजकल साइबर फ्रॉड भी बढ़ रही है, तो विशु बचावन वास्ते वे वन जागरूक कर सके कि यहाँ फ्रॉड हो रही है वे समझा सके। और आजकल रा युवा जका है वे करियर में ज्यादा व्यस्त रहे, तो अपन दिन में थोड़ा सा टाइम देर आप 10 मिनट निकाल और बुजुर्ग रे करने बैठो, बड़ा बुजुर्ग जगह है वाने आप समझाओ, कोई भी डिजिटल तकनीक है वीरे बारे में बताओ ताकि वे भी इरी हेल्प लेर कोई भी काम है जो को आसान बना सके। तो इस सुखाई बुजुर्ग री जकी आधी थकावट है बा भी आपनों साथ देवन सु दूर हो जावे।
1: बिल्कुल सही किया, और कई बार अपन देखा भी है टाबरा ना पके वहां कभी थोड़ी देर जान दादा करने बैठ तो वे गुस्सा हो जावे कि नहीं वे तो बार आपकी पुरानी बात कहीं मैं तो बोर हो जाऊं मैं तो नहीं सुनू, लेकिन नहीं थोड़ा सा वे आपके अनुभव जब अपन बतावे तो अपन ध्यान लगा सुनना चाहिए, और कड़ी कड़ी वेणी बात इतनी इंटरेस्टिंग लगे, इतना तो मजा आवे वेणी बात सुनने में कि मतलब बैठने मन करे और सुनने मन करे, तो
0: बिल्कुल
1: टाबरा ने भी इन बात से आप प्रेरित करो कि नहीं थोड़ी देर आप जाने दादा दादी साथ आप समय बिताओ,
0: बिल्कुल
1: और जीवन रे सफर में जो हम सफर होया करे उनरी भी हमें सबसे ज्यादा बुढ़ापा रे मायने ठा पड़िया करे, सुख दुख रो जो साथी है वो आधो जीव एक दूजा रे मायने बसिया करे है, जन टाबर आपरी कमाई और दुनियादारी रे मायने लाग जावे बारे कमाऊने चलिया जावे, तो उन टाइम जद हम सफर होया करे जीवन साथी सच्चो वही होया करे है, उन टाइम वही वेणी सेहत रो ध्यान रखे करे, दोनों एक दूजा से बात करे करे, और एक दूजा रे साथ समय बिताने रो मौको भी बुढ़ापे रे मायने मिलिया करे।
0: मिले। और जिया कि आप बेटा बहू री बात करी आप बारे रहो, पण दिया देख किया करे ना कि सबसु संवेदनशील और सबसु महत्वपूर्ण भूमिका होया करे बा बेटा बहू री होया करे, क्योंकि ओ जो को उम्र रो पड़ाव है वो सबसु नाजुक हुए। टाइम पर दवाया लेनो, नियमित चेकअप वास्ते वाने कहनो, वारो जो को खान पान है, पौष्टिक आहार है, या जकी है जका बहू री जिम्मेदारी हुआ करे। और घर रो कोई भी फैसलो वो बुजुर्ग री जकी राय है बा जरूर आप वासु ले, और वाने ये लागनो चीजें कि आज भी घर रो जो का मुखिया है वे वहाँ पर बोझ नहीं है, वे कोई भी व्यवस्था है वारे अनुकूल है वारे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि कमरा री जिया टाइला है, बाथरूम री टाइला है, वे फिसलन वाली ज़्यादा फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए, या कोई रात रे टाइम में कोई रोशनी री जगह है तो रोशनी राखनी चाहिए ताकि वाने चालन में दिक्कत नहीं आवे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल, तो आ तो घर सारी बात, लेकिन जो आस पड़ोस में रहे नहीं व्याण भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बने कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है आप आस पड़ोस में वे अकेला रह रहे हैं तो वी टाइम वे कोई काम की जरूरत है तो उन टाइम व्याणी मदद कर दो या

0: तो कोमल, बूढ़ा बड़ेरारी बात कर रहा, तो एक कहावत बताऊँ आपने,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बताओ।
0: बूढ़ा बड़ेरारी बात ज्या रांदियोड़ी खात, मतलब बुजुर्गारी बात और उनारी सलाह हमेशा पक्योड़ा भोजन की तरफ फायदेमंद और जीवन ने आसान बनाने वाली होया करे। और बूढ़ा बुजुर्गारो जीवन आसान बनाया करे अपन परिवार रो सहयोग और थोड़ो सो अपनो योगदान।
1: बिल्कुल, क्योंकि ओ जो को उम्र रो पड़ाव हुआ करे पूरम जी, इन मायने आर जका अपना दादा दादी है, अपना माता पिता है, थोड़ी थोड़ी बातें भी भूलन लाग जावे। जैसे कि आप सुनते हैं कि सब पहले तो चश्मों कट रख दियो, बिने रख
0: बिल्कुल
1: कर भूल गया, जना भी अपन बार बार पूछता रहे तो इन्हें विज्ञान की भाषा में डिमेश

0: पछे थोड़ी सी देर जार व्यार करने बैठ जाओ, या व्याने थोड़ी सी देर बारे लेर घुमान लेना जाओ, सैर करान लेना जाओ, तो आस पड़ोस वाला री भी जिम्मेदारी बनिया करे कि वे व्यानो ध्यान रखें।
1: तो बिल्कुल इन बातों रो ध्यान राख से, और सुना दाबे एक प्यारो सो गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: तो कोमल, दादा दादी रो लाड तो आज भी याद आवे, क्योंकि जब कोई भी चीज या अब लावणी जिद करता तो मम्मी और पापा तो मना कर देता, पर व्यार छाने छाने दादा दादी अपन वह चीज जरूर दिला देता। अपन रोवन कौन देता कदे भी, मम्मी जदे भी मारती नहीं तो मारन भी कौन देता।
7: डांट पड़ती भी टाइम, डरता कि माँ बाप ठोकन उपेली देखता कि कटी दादा दादी तो कने नहीं। हाँ। तो चुप। तो ये बात है जो कि आज भी याद आवे, क्योंकि बुजुर्ग जका अपना दादा दादी जका वो प्यार है जो को एक अलग ही हो।
6: बिल्कुल। और कटे भी वे जाता तो साथे जाऊनी जिद भी करता अपन मेरा, और वे लेर भी जाता, कभी अपन रोवान तक कोनी, रो तो छोड़न जाता भी कोनी कि नहीं, और रोवेला तो मेरा जी दुख पाव। तो एक कहावत भी है वर मते कि बाल थोड़ा मतलब तावड़ा में ही कोनी है, यानी कि जो सफेद बाल वाला उम्र रे हिसाब हो जावे तो वे उम्र रे नहीं बल्कि जीवन रे कड़ा अनुभव और संघर्ष रो प्रतीक होया करे है।
7: बिल्कुल।
6: और अब आप बात करो वेने कानूनी अधिकार और सरकारी योजना वाली, तो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून, कानूनन माता पिता री देखभाल री जिम्मेदारी है जिको बच्चा री होया करे। अगर कोई बच्चो अड़ो नहीं करे, वेरी देखभाल नहीं करे, तो बुजुर्गा ने कानूनी सुरक्षा रो अधिकार है।
7: बिल्कुल है। और भारत सरकार जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो भी बुजुर्ग की देखभाल और सुरक्षा रे वास्ते हमारी मदद रे वास्ते जिया की योजना चला रखी है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान योजना,

0: जबकि बुजुर्ग आली देखभाल रे वास्ते और डॉक्टर आने नर्स आने और वारा परिवार रा सदस्य ने भी ट्रेनिंग दिया करे।
1: और बैंकिंग और टैक्स रे मायने छूट बुजुर्ग ने एफडी पर ज्यादा ब्याज मिले और इनकम टैक्स रे मायने भी विशेष छूट दी जावे। रेलवे और बस रे मायने भी उनारे वास्ते विशेष सुविधा है जिको करी जाया करे।
0: बिल्कुल, और अटल वयो अभ्युदय योजना रे तहत देश भर रे मायने जितना भी वृद्धाश्रम है कंटिन्यूएशन केयर होम चलाया जावे जठे बे सारा बुजुर्ग ने मुफ्त रेवन रे वास्ते और भी खानो पीणो दवाइयां और मनोरंजन की जकी सुविधाएं आए बे सारी अंतर्गत मिलिया करे। और पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जको अब बुजुर्ग ने बैंक री लाइना में लगन की जरूरत कोनी, बे घर बैठे आप रो स्मार्टफोन सु या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करवा सके, जकर जानकारी भी बे कोई भी जानकार हुए या कोई भी आसपास मित्र है भी परसु आप ले सके।
1: और जो भी असहाय बुजुर्ग है वने कोर्ट कचहरी जितना भी काम है विन सारू मुफ्त वकील और कानूनी सलाह दी जाए करें। और मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना तो हर महीने जो भी बुजुर्ग असहाय है वे पेंशन के रूप में महीने राशि मिले करे जो सीधी वेर खाता रे महीने आया करे। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बुजुर्ग ने बीमारी रे वगत अस्पताल में मुफ्त इलाज और जाँच की सुविधा मिले करे है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देश का जो भी बड़ा तीर्थ स्थल है व्यारी मुफ्त हवाई और रेल यात्रा करवाई जाया करे है।
0: बिल्कुल, इनके साथ साथ ही देखा कि कठे जो कि बुजुर्गों की स्थिति है बस सही कौन रहे वे अपने करने आस पास या आड़े पड़े एडा बुजुर्ग भी होवे जकर कोई सहारो नहीं हुए या कोई परेशानी में वे हुए, तो अगर आपने ध्यान में एडा कोई बुजुर्ग है तो आप वारी मदद कर सको, क्योंकि भारत सरकार एडा ही बुजुर्गारी मदद रे वास्ते एक विशेष टोल फ्री नंबर जारी करिया है जका है।
1: जका नंबर है 1-4-5-6-7। एक बार
0: बिल्कुल
1: वापस सु 1-4-5-6-7। इन माते कॉल करना आप जो भी आपकी शिकायत है कोई सलाह है वह ले सको हो।
0: बिल्कुल, और आप कोई भी पेंशन या भावनात्मक मदद है बाबी है वो जो कोई पे वो आपने दे सके है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो कोमल, दादाजी ने छड़ी।

0: भी मारी एक पुरानी बात याद आएगी। मारे भी परदादा कने एक छड़ी होती, तो मैं कहीं करता वह जो चालता नहीं, मैं भी वह छड़ी ले नकल करता और वह जो चालता, और कई बार रमत रपत में वह छड़ी अटी उटी रख देता, और जब वह चाहिए थी तो वह ढूंढता, और गुस्सा भी हो जाता कई बार। और गुस्सा तो यूं भी होता जब कोई भी काम वह समय पर नहीं होता नहीं, तो वह गुस्सा हो जाता क्योंकि वह दिनचर्या पक्का हा, वह
1: बिल्कुल
0: जो चीज जिन टाइम चाहिए वह उन्हीं टाइम वह हाजिर मिलनी चाहिए थी, नहीं तो वह नाराज हो जाता।
1: बिल्कुल
0: और नाराज होना भी जायज है क्योंकि देखो दिनचर्या हुई तो शरीर निरोगो और रिया कर अपने, क्योंकि वे 100 साल रे उम्र रे मैंने भी बिना चश्मा रे देख लेता, और आज तो छोटा छोटा बच्चा रे भी चश्मा लागण लाग गया है।
1: बिल्कुल। देखो भले ही बे बूढ़ा हो जाओ, लेकिन किया करे ना कि कोई ना कोई खास बात बा में जरूर ही बे आप हौसलों को नार था, और किया भी करे कि हौसलो जो को है वो बूढ़ो को नहीं हुआ, बल्कि अपन जो की सोच है बा बूढ़ी हो जाए करे। और अब आज की अपन अठेरा कई बुजुर्ग साबित कर चुकिया है और कुछ कर भी रिया है, क्योंकि बे जका है बढ़ती उम्र में शारीरिक और सामाजिक चुनौतियां ने साइड में रखकर एक नई शुरुआत भी करी, और साथ ही साथ अपना विश्व स्तर माते पहचान भी दिलाई। जियन की आप बात करा बीकानेर रा पानी देवी जका 94 साल री उम्र रे मायने गोल्डन दीदी रे नाम सु जानी छे, और 90 साल री उम्र में पार करन रे बाद भी पहली बार बे खेल मैदान में पैर रखियो, और बे एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे साथे ही कई प्रतियोगिता में बे दौड़ कर जियन की शॉट पुट गोला फेंक के भाला फेंक के बीरे मायने भी 1600 भी ज्यादा गोल्ड मेडल जीत और बे देश रो नाम रोशन करियो।
0: बिल्कुल। और लालजी भाई प्रजापति सिर्फ 17 साल री उम्र में ग्लूकोमा रे कारण इनारी आँखें री रोशनी चली गई, पण वे आपरी इन कमजोरी ने ताकत बनाई, और ढलती उम्र रे मैंने भी हजारों दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग मोबिलिटी और आत्मनिर्भर बनाने रे वास्ते रोजगार का नया अवसर दिया।
1: बिल्कुल। और किरण बाई जका 82 साल का हा और चेन्नई री जकी रेवन वाला हा, और बे मार्गदर्शन माते एक पोता रा मार्गदर्शन माते वे ट्रेनिंग शुरू करी, जिरे मायने आज बे 82 साल री उम्र में भी 80 किलो तक वजन उठावे, जको वारे स्वालंबी और फिटनेस ने बतायावे।
0: और गोपाल दादा की बात करा जेका जयपुर से है, तो जयपुर शहर री भीषण गर्मी में गोपाल दादा 78 वर्ष की उम्र में भी लाडला कई साला सु एक अनूठी मिसाल बनने रोजाना सड़क किनारे आपरे माटी रे मटके रे साथे बैठे, और वटे सु गुजरने वाला हर प्यासे व्यक्ति ने डिलीवरी बॉय ने राहगीर ने मुफ्त ठंडो पानी पिलाने भारत री जी की पारंपरिक प्यौरी परंपरा है उन्हें जीवित राख दिया है।
1: बिल्कुल। और 95 साल री उम्र रे मायने अलवर रा लालू राम सैनी जका साबित करियो कि उम्र दौड़न री रफ्तार नहीं रोक सके, बे राजस्थान स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 95 साल की उम्र में 100 मीटर जकी दौड़ है वे पूरी करर युवा माने दांत रे तले अंगुली दबावन माते मजबूर कर दिया।
0: और बात करा द्विजेंद्र नाथ घोष री, पश्चिम बंगाल रे बसंतपुर रा रिटायर्ड शिक्षक जो रिटायरमेंट रे बाद भी आपरे गांव और आसपास रे पिछड़ा बच्चा ने मुफ्त कोचिंग देने रो और उन्हा रे परिवार ने शिक्षा रे प्रति जागरूक करने रो अभियान शुरू करियो।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर भक्ति यादव जका है बे पहली महिला डॉक्टर हा, 1952 सु मरीजा रो इलाज शुरू करियो हो बे, और उम्र बढ़न रे बाद भी बे 91 साल तानी यानी आपरा आखिरी वगत तक बे आर्थिक रूप से कमजोर महिला रहो महिला मारो और मरीज रो मरीजा रो मुफ्त रे मायने बहुत ही कम फीस में इलाज करियो, जका रे वास्ते वाने पद्मश्री सम्मान भी मिलियो।
0: अंधुराम दास असम रा सेवानिवृत्त शिक्षक 85 उम्र में भी खो खो खेलने बढ़ावा देवन सारू 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रशिक्षित कर चुकिया है। और बात करा रुक्मणि देवी तल्लुरी री, तो 70 वर्षीय रुक्मणि देवी 50 वर्ष की उम्र में फिर से खेल री दुनिया में वापसी करी, और हाल ही में वे एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पोल वॉल्ट में रजत और हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीतियो।
1: बिल्कुल। और दिल्ली रा मेडिसिन बाबा जी ने कहवे जका है ओंकार नाथ जका 85 साल री उम्र रे मायने दिल्ली री सड़का रे माथे पैदल चाले और लोगा रा घरा में जार बच्चे री जकी भी दवाइयां है जकी काम में नहीं लिए रही है बंद, तो बा दवाइयां ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगा रे मायने बे बांटे। यह भी आपने मंगला आंवले हुआ हरभजन कौर हुआ ए बहुत ही समाज री भलाई हो या फिर आत्मनिर्भरता री बात आवे तो जकी झुरिया सु भरेड़ा हाथ है बे देश री दिशा है जकी बदल सके, और वो भी साबित हुए कि उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो उम्र सिर्फ एक उम्र नहीं है बल्कि अब एक नंबर ही है जो कि बढ़ती उम्र और हौसला ने कम नहीं होने देवे।

0: पूनम जी किया करे कि जका बुजुर्ग लगातार काम में व्यस्त रहे या शारीरिक और मानसिक रूप सुबह सब ज्यादा स्वस्थ रिया करे, और कहे कि सांस सवेरे जो पावा चालसी भी को हिवड़ो हमेशा खिलसी।
1: बिल्कुल सही कहो। माँ बाप री आशीष जटे दुख दर्द कदे भटके कठे, मतलब कदे ही नहीं भटके वे, जटे माँ बाप री आशीर्वाद होया करे वे कने दुख दर्द बिल्कुल नहीं भटकिया करे।
0: बिल्कुल, और बैठिया बैठिया हाथ पैर हिलाओ, सांधारी जकड़न ने दूर भगाओ।
1: बिल्कुल सही कहो। और गरारे में जे बुजुर्ग मुस्कुरावे तो समझो साक्षात लक्ष्मी आवे।
0: रोज सवेरे जो प्राणायाम करसी वो लंबी उम्र और निरोगी जीसी।
1: बाप दादा रा बोल अमोल, जीवन में बनाओ अनमोल।
0: बिल्कुल, 30 लाख बार वो मत करो इंतजार, दिन भर घूंट पानी पियो बार बार।
1: उमंग और अनुभव रो मेल, बुजुर्ग है मारा असली खेल।
0: थाली में राखो राबड़ी दड़ियो और साग, कब्ज भागेली थे देखियो भाग।
1: धीरज धर्म अनुभव रो ज्ञान, बुजुर्ग है मारी असली साख।
0: और कम करो लून खांड और तेल, बीमारी रो मिट जासी खेल। बिल्कुल, और दूध दही खाओ और बैठो थोड़ी धूप, हड्डियां मजबूत राखबारो ओई छे रूप।
1: अखबार बाँची या
0: बुझो कोई पहेली, यादाश्त बनी रहसी थारी सहेली। और अकेला मत बैठ जो, छोड़ो वो साथ, दोस्ता भेड़ा बैठ करो चार बात। तो ये सब बातें बूढ़ा वडेरा ने ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर सेहत ने स्वस्थ रखनी है तो ये चीज़ अपने वास्ते बहुत ही खास हुआ करे है।

0: बिल्कुल पूनम जी, जबकि पेड़ री शाखाएं हैं कितनी भी ऊंची हो, अगर वाने जड़ा सु काट्यो जावे तो वे सूख जाया करे। तो ये जका बूढ़ा बड़ेरा बुजुर्ग है, ये अपने परिवार री जड़िया है, आने सहज रखो और आने सम्मान दो, प्रेम करो, वारे कन्ने बैठो, वासु जीवन जीवन रो सलीको सीखो। और आज रो कार्यक्रम जको है माटी रा संस्कार, बड़ेरा रो सत्कार आई सीख है जकी आपने देवे।
1: बिल्कुल। और आज रे आपके साथ ही आपकी दो सखिया कोमल राठौर और पूनम देवड़ा, और कंसोल पर आपने गीत सुना रहा है रेखा भाटिया, और एचपीटी से सहयोग कर रहा है विक्रम सिंह भाटी, राय सिंह राव, एफएम ट्रांसमीटर पर आसीएल सोनी, और कंट्रोल रूम से सहयोग कर रहा है गजेंद्र सिंह राठौर, और कार्यक्रम में संयोजन और प्रस्तुति हो मनीष कुमार सोलंकी रो।
0: बिल्कुल। और अबे आप दोनों सखिया ने दिलाओ सीख, चाला
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर, ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी और एफएम सनसिटी चैनल है। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने के बाद कुछ क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को

0: हल्के में न लें क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना, मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का

0: में आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि एनएएफआईएस की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टियर 2 टियर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Acquisition on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा हो। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।

0: है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, न कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की

0: चर्चा करने जा रहे हैं।
1: विमलेश जी देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहां पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओ अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
0: तो श्रोताओं ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जो रहस्यों और रोमांच
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा जब मेरी नींद खुली तो अपने मित्र तो मैंने अपने
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा फंबल था
2: कि कोई चीज
0: तो अब आज

0: कार्यक्रम मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की

सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से

उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी

और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह

0: उबती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। दिन के 3 बजने को है। मीडियम व्यू पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है, परंतु FM बैंड पर विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। दूसरी सभा में शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी है, अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की

0: गरिमा में उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: And is in a separate hall where is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. Now you see, everything is digital. So India has also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉर्ट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology FAT through forgetting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया

0: द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो, इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके। और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो। और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट लेट दिस प्राइम मिनिस्टर इज गिवन देम एन अश्योरेंस दैट द गवर्नमेंट इज देयर विद यू, दैट इज व्हाट ही सेज इन दिस मोटो, नो रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार।
0: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहां जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
1: एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जिनको पहली बार नौकरी मिली। दिस कॉम्पोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स एंटरिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एलिजिबिलिटी इज न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग एन ईपीएफओ, दैट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट विद अ मंथली ग्रॉस सैलरी ऑफ अप टू ₹1 lakh and the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of ₹15,000.
0: Mm-hmm.
1: Right?
0: Mm-hmm.
1: And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of ₹7,500, and the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of ₹15,000. And the employer also, of course, he also gains something every time he brings in a new worker. He also gets a benefit of ₹3,000 per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है।
1: yes.
0: बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।
1: yeah.
0: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: yes. See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India.

0: through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रो ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: एंड दैट्स व्हाट वी से, यू नो, ड्रीम्स आर बीइंग फुलफिल्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इन फैक्ट दिस एप्लीकेबल पीरियड फॉर दिस वन, द वन व्हिच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, इज फ्रॉम द 1st of August 2025, स्टार्टेड लास्ट ईयर, टिल द 31st of July 2027। सो दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। बट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, हैवी industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 years.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization. It is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
0: एटमोस्फियर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन, सो he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting, silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना?
0: Yeah.
1: Live जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ।
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो

0: किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है।
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए,
1: yes,
0: तब
1: yes.
0: ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था।
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, support first time job seekers, that is what it says now. The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce, and then support first time job seekers, and then incentivize employers especially in the manufacturing sector to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा।
1: yes.
0: ये बहुत
1: yes.
0: जरूरी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020। 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी।
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, the money will go to 15 lakh people into their accounts, and they'll be getting their letters, and it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know, just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are going digital in every field. So we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है।
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी। पीपल आर दे आर ऑल जॉब सीकर्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स। दे आर ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल, सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर।
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए। और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं?
1: Yeah.
0: आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके, और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह
1: yes.
0: सकते हैं।
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेस

0: उपभोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: एंड सी द डैश, हाउ मेनी बुकेज आर देयर। द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग राइट इन द मिडल, ऑन द राइट विल बी फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बिहाइंड यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल वन, देयर इज अ स्क्रीन ऑन द on the plenary hall and the dais, just behind the dais there's a beautiful board and on that the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his role as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment. Right, just to remove this unemployment, reduce it to the max minimum, reduce the unemployment to the minimum, so that more and more people are employed, and they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient. They are independently, the financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना, ये एक प्राउड मोमेंट होता है, नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा, कालकटरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में। बच्चों को लगता था परीक्षा, अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के आ जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know. And even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable. For not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them. And what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to

0: mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
0: yeah. है ना एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया राइट द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press or that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here. And there's one person.
1: Translate.
0: Yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything. And he's saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know. And... it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है ज्यादा नहीं और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे बातचीत खत्म ना हो नहीं
0: आई थिंक एवरीथिंग इज स्टॉप्ड दे आर ऑल इन अटेंशन एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग With other dignitaries, he'll be taking his seat on the dais. And once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He has entered. And he's entered. And he's walking in. The most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
3: Ek baar zordaar taaliyan ho jaye.
2: Deviyon aur sajjano taaliyon ki gadgadahat rukni nahi chahiye.
3: Aur unke saath is afsar ki shobha aur bada rahe hain. Zordaar taaliyon se swagat kijiye. हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल
3: माई भारत वॉलंटियर्स आप सभी का
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the dais.
3: Pradhan Mantri ji, hum aapko savine suchit karna chahte hain ki aaj
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण

0: कर लिया।
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामुनि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
0: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
1: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।

0: रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks.
0: जोरदार तालियां हो जाएं।
2: By श्री मनसुख मांडविया, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि

0: गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। एक क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
1: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
0: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रूपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर मिले।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: And that was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. There is a remote control button and the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money and the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.

0: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
1: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
0: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
1: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के

अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े

सुनने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता है छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के

सबसे युवा देशों में से एक है। इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो।

मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं।

और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प।

0: संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is, the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रयू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
0: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को
5: पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए रोजगार सृजित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है।
0: यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
5: प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। जयपुर के सीतापुरा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक

0: खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रूपये की 3 किस्तों में कुल 6,000 रूपये सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाया जाए। आज नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जिक्र किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब व्यापक डेटा लगातार उत्पन्न किया जाए।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के तहत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि युवा जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत और देशभर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुए इस योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक समन्वय, मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
2: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और इस योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं, ताकि हम लोग निरोगी रह सकें, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सकें।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। राज्य में अन्य स्थानों पर हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद संस्थान की ओर से हवा महल तक योगा रैली निकाली गई। इसमें संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर पाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज से अगले महीने की 5 तारीख तक के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध पर फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षाकाल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों और पति पत्नी के मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता की।

0: मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं योजनाओं और परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और यहां के युवा एक से बढ़कर एक नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं।
1: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसमें 20,798 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जयपुर द्वारा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जांच साक्षात्कार समय की जाएगी। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे वर्तमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 1,086 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जयपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर के 15 स्थानों पर लगे 47 कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसे मामलों में नियमित ई चालान जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भी राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में हर महीने 800 रूपये की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रल्हाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योग के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और RPSC ने SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव ने कुशलगढ़ पंचायत समिति की बड़वास, छोटी, निशानावट और टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं

का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में बांसवाड़ा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली चंद्रपोल गेट से शुरू हुई। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा और आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश दत्त पांडे ने रैली को रवाना किया। इसमें स्काउट और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार भाबूर ने तलवाड़ा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने चित्रा डूंगरी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और एएनएम आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं

0: और एएनएम आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और सभी पात्र लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र बांसवाड़ा में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत और समाजसेवी पूंजीलाल गायरी ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हैंडपंपों, टैंकरों और जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी ली। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होने से समस्या सामने आई है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। खराब हैंडपंपों की मरम्मत भी कराई गई है। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारी चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी महिलाओं को सहायता राशि के चेक बांटे गए। बांसवाड़ा में युवा संबल मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए 812 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 431 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 174 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ने आत्मा प्रशिक्षण हॉल में प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की। किसानों को प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी दी गई। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रगतिशील किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग लिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जिले में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने लोगों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में चित्रकला, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इनमें लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जनजातीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में 6 जून से 26 जून तक आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 262 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें 120 बालिकाएं और 142 बालक शामिल हैं। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, खो खो और फुटबॉल, हैंडबॉल तथा बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, नौजवान और उद्योगन एक सागे आगे बढ़वाऊ, नौकरी धंधारा मौका बनबारी गति बथैला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापका रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। और आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हमारा राज माए नौकरी धंधा रा नुआ मौका बनावन सारू कई योजनावां चलाई ची है और व्यवस्था माए जरूरी बदलाव करी चिया है। प्रधानमंत्री पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत आज करीब 2,400 करोड़ रूपये री रकम जारी कीनी। ई मौके श्री मोदी कहो कि नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ, नौकरी धंधा रा मौका बधे है। वह केंद्र सरकार का न्यू लाडला 10 साल माई चलाई ची न्यारी न्यारी योजनावां रो जिक्र करता था का कहो के ए योजनावां मोटी तादाद माई नौकरी धंधा रा मौका बनाया। प्रधानमंत्री कहो के आ योजना नौजवाना और उद्योगा बीच मजबूत

0: मजबूत पुल रो काम कर रही है।
1: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
0: प्रधानमंत्री नौजवाना सागे बातचीत किन्नी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा समेत आखा देश माय 200 ठोड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर माय फिर राज्य स्तर रा कार्यक्रम माय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही शिरकत कीनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त काल जारी करी जावेला। इन जरिए 9,44,00,000 उम्बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880,32,00,000 रकम भेजी जावेला। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला माई इन कार्यक्रम सारू तैयारियां चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रूपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रूपया री माली मदद दी जावे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानूनी प्रक्रिया रा हर दौर माय प्रौद्योगिकी ने असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो है। वे आज नई दिल्ली माय 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 माय बोल रहा है। गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली रो जिक्र करता था का कहो कि आपराधिक न्याय प्रणाली ने देश रा हर रहवासी ने संविधान माय दिया जे हक हासिल करण रो उपयुक्त जरियो बनावण रो भगत आग्यो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली कई मुश्किल मामला नई आसान बनावण माय घणी मदद कीनी है। गृह मंत्री कहो कि फिलहाल इरा बूता रो केवल 10% ही काम लियो जा रियो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली अपराधियां रे पिछाण करण माय घणी असरदार है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
0: 21 जून ने मनाया जावण वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आज विधानसभा परिसर माए योग कार्यक्रम राखी चियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई माए करी जाए इन योगाभ्यास माए विधायक, विधानसभा सचिवालय रा अहलकार और कर्मचारी शामिल फिया। इस मौके देवनानी कहो कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन रो नजरियो बतावे है। वह सगलाऊ योग ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन रे अरज कीनी।
3: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही आज वाना रहवास माथे विश्व योगासन चैंपियनशिप माए तमगा जीतन वाला सागे योगाभ्यास कीनो। इन सागे राज्य माए चाल रहा योग कार्यक्रम रा तहत जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर माए जुम्बा रैली निकाली ची। इन पाछे संस्थान रा शिक्षक और विद्यार्थियों री ओर हवा महल ताई योग रैली निकाली ची। पाली माए आयुर्वेद विभाग री ओर सामूहिक योगाभ्यास करवाई चियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके भारतीय वायुसेना देश भर माए योग सत्र राखेला। रक्षा मंत्रालय रे मुजब वायुसेना रा कर्मचारी वाना परिवार वाला सागे योग सत्र माए शामिल भेला। वहां सागे स्कूली बच्चा और एनसीसी कैडेटी आखा देश माए न्यारा न्यारा वायुसेना टेसना माथे रख्या जावण वाला योग सत्र माए शिरकत करेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार सरकारी अहलकारा और कर्मचारियों का तबादला माथे रोक फिलहाल हटा दीनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग री ओर जारी हुक्म रे मुजब 5 जुलाई ताई तबादला कराया जा सकेला। हालांकि शिक्षा विभाग रा थर्ड ग्रेड अध्यापका ना तबादला फिलहाल नहीं कराया जावेला। इस आगे चौमासा माए बीमारियां ना पसारा रे शंका न ध्यान

0: राखता थका चिकित्सा विभाग में ही तबादला माथे रोक रहवेला हुकम रे मुजब घना मांदा कर्मचारियां और लोग लुगाई रा मामला माथे खास ध्यान दियो चावेला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रा अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह नवाचार और उद्यमिता हलकाओं जुड़िया खास लोगों सागे आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब में बातचीत कीनी। इन दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम रा विकास मौका और चुनौतियां रे बारा में चर्चा करी ची। कार्यक्रम में श्री सिंह सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष मुद्दा माथे चर्चा करता थका कहो के राजस्थान नवाचार और उद्यमिता ने बढ़ावो देवन माए खास काम कीनो है। वह स्टार्टअप इकोसिस्टम रो फायदो मोटा शहरां सागे दूर राजिना और समुदायां ताई पुगावन माथे जोर तीनो। कार्यक्रम पाछे खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका श्री सिंह कहो के प्रदेश माए 8,000 नू बत्ता स्टार्टअप है और नौजवान नुवी जुगत लगा रहा है। वह कहो के स्टार्टअप रा मामला माए राजस्थान देश रा अगाड़ी राज्य माए शामिल है।
1: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग आज SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो। आयोग रा सचिव राम न्यास मेहता बतायो कि 20,798 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू पास करी चिया है। पास हुआ उम्मीदवारा ने शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू जानकारी देती जावेला। आ उम्मीदवारा री पात्रता संबंधी जांच इंटरव्यू री भगत करी जावेला। ध्यान जोग है कि 1,086 ओहदा माथे भर्ती सारू आ लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 न लीरी जी ही। जयपुर पुलिस यातायात नियम तोड़बा वाला के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई और कड़ी करती नी है। शहर में 15 ठोड़ा लगाई जिया 47 कैमरा रे जरिए वाहन चलावन वाला माथे ऑनलाइन तरीका निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस रा उपायुक्त योगेश गोयल बतायो कि तेज गति वाहन चलावण और लाल बत्ती पार करण वाला रे खिलाफ लगातार ई चालान जारी करिया जा रहा है। राज्य में प्रोबेशन पीरियड वाला सरकारी कर्मचारियां ने राज्य बीमा योजना रो फायदो दियो चावेला। बीमा और प्रावधायी निधि विभाग का न्यू मिली जानकारी रे मुजब आ कर्मचारियां री तनख्वाह हुई राज्य बीमा प्रीमियम रा तौर हर महीना 800 रूपया री कटौती करी जावेला। आ व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 लागू मानी जावेला। रेलवे जोधपुर चेन्नई बीच हर सप्ताह खास रेलगाड़ी चलावन रो फैसलो किन्नो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो कि आ गाड़ी 27 जून नू 25 जुलाई ताई हर थावर न जोधपुर रवाना वेर सोमवार सिंजा चेन्नई पुगेला। वापसी माए आ गाड़ी 30 जून नू 28 जुलाई ताई हर मंगलवार न चेन्नई रवाना वेर गुरुवार न जोधपुर पुगेला। आगाड़ी जयपुर सवाई माधोपुर भोपाल नागपुर और विजयवाड़ा समेत कई खास स्टेशन माथे रुकेला। राज्य में अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा विद्यार्थियां सारू छात्रवृत्ति री योजना तहत अर्जी देती भगत निवास प्रमाण पत्र देवन री जरूरत नहीं रहवेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रे मुजब इन फैसला रो मकसद विद्यार्थियां सारू अर्जी देवन री प्रक्रिया ने आसान बनावनु है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा उम्मीदवारा सारू प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना रो हर साल करीब 1,20,00,000 विद्यार्थियों ने फायदो मिला है। हाल ताई वजीफा सारू निवास प्रमाण पत्र जमा कराउनो जरूरी हो। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधा रा मौका बनवारी गति बधेला। PM किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियां रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापकां रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। @rpsc@

0: भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।
2: गांव ग्वार अर खेत खलियानरी बात, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो, आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको। झुमको कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव नारवा इंद्रो का सुन नरपतलाल सोनी शिवम और वैशाली खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाली जिज्ञा देवी श्रीमाली सीमा खुशी विशाल मन्नत सुनील किशोर ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगलो परिवार गांव केलवाद सोजत सु ओ कागज लिखियो है सुरेश मेघवाल मंजू निशा और कृष्णा मेघवाल कागज आयो है धोबी घाट इंदिरा कॉलोनी जोधपुर सु लिखन आला है नंद किशोर बारिया नंदू धनवंती काड़ू सुमन चांदनी और आनो सगलो परिवार भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी गांव चाडी सु उत्तम चंद छाजेड़ राणूलाल छाजेड़ शांतिलाल छाजेड़ कमला देवी छाजेड़ और आनो सगलो परिवार और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी महामंदिर

रोक बचनारो ओहे फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आपरो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी गांव बेरावास तहसील खिमसर नागौर सु ओ ईमेल आयो है भुट्टाराम मेघवाल सुनील मुकेश भूरा राम शोभा राम लादू राम मंजू मोनिका सुरता पूजा और शारदा मेघवाल रो ओ कागज माने कने आयो है गाँव तापू तहसील ओसिया सु लिखियो है संतोका राम मेघवंशी पटकू धीरू अशोक भाटी कुसुम भाटी आरती एलची बिदकी भाटी लाखाराम भाटी दिलीप पार्वती दिव्या और आना सगला घराला गांव खींदा सरसू ईमेल भेजियो है कानाराम चौहान सुखाराम श्याम सुंदर और तपस्या खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य खिमसर नागौर सो कल्याण मल प्रभु राम बंशीलाल हेमा राम शोभा राम मौर्य और आना सगला साथी और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सो लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी और ईमेल आयो है गांव दूंदाड़ा सू गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना घराड़ा बुढ़ा मलानी सू और ईमेल आयो है सुरजा राम बारासन और आना साथियारो बैनी पट्टी मधुबनी बिहार सू कल्पना वाल्मीकि और मैथिली वाल्मीकि गांव मेलाना सू छेला राम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी मेघवाल तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना पांडव नगर दोरी मीना सु ईमेल भेजियो है देराम राम गोदारा आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना

साथियां ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अबे कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ नमस्कार।

मायड़ भाषा रो सुरीलो संगीत गर सुनना चाहो हो आप तो लिखो माने कागज कार्यक्रम झुमको द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पावटा सी रोड जोधपुर।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर।

0: हेलो बा
1: फट खुली है राखी
0: अरे कड़े ऊंडा बैठा हो
1: ऊंडा कह नहीं कह पड़गा कह मत कुंडा
0: ना ये ना बोलो
1: आज मैं आज यू है तो पसी मत कुंडा पड़िया देखो आज नीचा उतार तो जो है जो मत पड़गा
0: ओहो
1: तो बात तो आई कहनी पड़ी कि भाई ऊंडा मत पड़गा कुंडा
0: सही बात है रेस्ट करो
1: गुरु भक्ति की घनी बात कह नहीं गीतड़ा घना गावे
0: आज ने वापर गुरु हर गोविंद सिंह जी नी बोरे जयंती है जन्म जयंती
1: ओ गुरु है जो अर्जुन देव जी निकाले ही
0: हाँ
1: आज है
0: हर गोविंद जी।

0: चीरी।
1: हाँ, 19 जून 19 जून।
0: हाँ भाई, जगह गुरा पीना री माता है और सिख पंथ में है जिको कह नहीं गुरु घना हुआ।
1: छठा गुरु था।
0: हाँ, गुरु नानक जी हुआ।
1: हाँ,
0: वो पंथ हरु हुआ जिको गुरु जी घना हुआ। 10 गुरु हुआ के
1: छठा गुरु है।
0: हाँ, छठा गुरु। हाँ भाई, जगह के आप खालसा पंथरा। हाँ, और कह के भाई देखो भक्ति इन शक्ति तो ही भेड़ी ही और पद कही लंगर लगावे और भूखे ने भोजन दे।
1: हाँ, ए युद्ध की कला सिखानता और प्रेरित करता सगलों ने अमृतसरी लड़ाई में भी साथ दियो तो कई कीरतपुर में गुरुसर में सब जगह स्थापना भी करी है।
0: और सिकर राज हो भाई, और सिकर राज घड़ो जियो और मुगला ने सिकर कह नहीं कह है जो कह के भाई घना जगह जंग लड़ी जा।
1: हाँ, तो बे जी के परिवर्तन होता नहीं आचार संहिता और परिवर्तन होता है।
0: हाँ, किन की है जो कह बदला होता भाई।
1: हाँ,
0: तो वाकई को गुरु हरि गोविंद सिंह जी ने आज है जिको कह नहीं भाई के मंदड़ेरा फूल चढ़ावा कोटि कोटि नमन करा। हाँ भाई, अब मैं भाई देखा है कि तप कर ली है।
1: तप तो कर ली है सर।
0: तप तो आज कहूँ हो भाई के मारे विचार है जो की है जो कह भाई साफ सफाई वाली मन में आई। देखो मैं कह कूड़ा पड़का माते तो बक्सो खोलियो जिसमें बक्से में बाबे रो कई है जो चीजा मने मिली
1: पुरानी चीजें मिली।
0: हाँ, क्या एक पुरानी घड़ी मिली जगह बे घड़ी बांधता ही। हाँ, तो मैं कह और भाई आप जूनी घड़ी अनुभव देखे चले घड़ी। हाँ, बड़े कई चुटिया मिली यार, बड़े खड़ऊ मिली यार, सिक्का ही पड़ी आबे ही मिली यार, एक दो जोड़ी गब ही मिली यार।
1: क्या बात है।
0: और देखे बगसो आप ही तो जूनो पुरानो है वही है जो आज एकदम क्या नहीं क्या भाई सही सलामत।
1: हाँ, तो मेरे माते एक बात याद आई मैंने, आज विश्व एथनिक दिवस भी है।
0: हाँ,
1: हर साल 19 जून वो मनाया जावे दुनिया भर में। अपर जितनी भी संस्कृति सभ्यता अपर विरासत और लोक कला की है नी, मेरे पारंपरिक ज्ञान ने सहजन खातर और दिन वीर सम्मान में व्यक्त करियो।
0: हाँ, अच्छी बात है भाई, देखो चीज बूझती होती और गब अलगता ही होता
1: बहुत चीज
0: आपरी है चीज घर भर तो की निशानियां ही तुम बक्से में देखी जिसको पुरानी थालियां मिली और बे कांसी थालियां एक है जो चांदी वाली बे कोई बाटकियां दूजान कोई मूर्तियां दूजान कई मिली बे हूँ आज साफ सफाई कर और पाचा बक्से में गान पसी तुम्हारे में लिया तो दिन है नहीं आज तो मार जोग जोर बैठो भाई
1: जोग जोर बैठो जने आज रे वेशभूषा पुरानी वेशभूषा पे आज दिन लोग सब लोग नृत्य करे लोग सभ्यता
0: जूनी पुरानी ही कल्पना कल्पना नवी बड़ा वेरे भाई सतराम देख
1: आप कला रो प्रदर्शन
0: करे भाई करे तो है के संसार में ओ दिन है जिको कह नहीं के मनाई जाए पर भाई एक देखे भाई राखी एक बात है मुठी के भाई कोई साहित्य है प्रेम है जिको काम करो जिको सोखो।
1: हाँ, आज मैं एक बात बात को ना शांति प्रेम री तो मैं आज कोई आ रही थी नी एक घर में एक लोग कूटता
0: कूटता।
1: हाँ,
0: घर मिलन कूटता
1: धनी कूटता
0: मगजम दिन रो कई है नी कई है जो कह नहीं कह कोई नशा पता कर ले कोई है जो जोर जबरदस्ती कर दे कोई जुलम कर दे घड़े ही है भाई दे कहसा जी बात नहीं राखी मारो काल जो घड़े कड़पे थारे अटी आवन जावन में कई मोड़ो बेगो है नी जद हूँ घड़े डरू बैठ
1: बैठा हो जाए सही बात
0: चिंता हो जाए बैठो कोई है दे कह आज मैं मिन का मैं मिनक पड़ो रियो कम
1: कम रियो सही है
0: भेड़िया घड़ा होगा।
1: हाँ,
0: तो बैठ ही कटी हाथ गाल दे कटी कोई जुलम कर दे कई है जो कह नहीं भाई कह घड़ा कह कुकर्म करे।
1: हाँ, जने तो आज यौन हिंसा के उन्मूलन वास्ते अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज।
0: हाँ, लुगी जात क्यों क्यों आगे बदी के तो मैंने खतरा हूँ है जो खेलनो पड़े
1: खतरों से खेलनो पड़े और सीख पहले तो डरती लुगे आज कल लुगे खुद बराबर मुकाबलो करे।
0: अरे मुकाबलो करे पर तो ही देखे भाई
1: अंतर रखनो पड़े सही।
0: हाँ, मैं तो कहूँ थारी बारे में जाओ थी कैमरा कोई मिर्चा पूरी हाथ राख बोकर एक छोटो मोटो कोई है नहीं कोई कह के भाई गुद्दो गले चढ़ो कोई पत्ती दूजी हाथ राख बोकर और की अंदर नहीं वैसे कोई की कर दे नहीं तो उन्हें खुनी ठोकनी एकदम के काउल ठोड़ एडी लात ठोकनी जिको ये तो पड़े ना को क्यों मिनक भाई का ढकी करी के क्या रो टाइम आएगो जो पहले बहन बेटी समझदार
1: आजकल समझे कौन सही है
0: तो भाई जड़ी है पर एक बात है वो एक पहला कोई है जिको एक पूरा जूना पुरा पुआ कह नहीं बेहा शायर।
1: अच्छा,
0: शायर लुधियाने गियो।

0: मैंने मिलिया मिलिया जब देखो है बैठे बैठे कोई यहाँ पर कोई गीत लिखता हाँ तो कोई जुल्म दे क्यों नहीं तो वो जुल्म दे क्यों जी उन मत कोई गीत लिखियो वो गीत मारे कांदा में पड़े जैसे मारे क्या नहीं मन में घड़ो क्या नहीं दुख है पर भाई ये बो मैं गीत लो आज हूँ थनी हुना दू
1: सुनाए दो आज
0: हुना दे भाई हुना दू थारी की हम पड़ता क्या मैंने जात ने जन्म देव नारी लुगी जात और है जिको
1: लुगई जात ने
0: लुगई रहते में मैंने कई कही
1: सही है
0: ठीक है नी
1: हाँ
2: औरत ने जन्म दिया मर्दों को मर्दों ने

0: वाह भाई वाह, निहाल कर दिया। और है जी को कहने के भाई बात है के हाँ है जी को देखो तो एक भाई राखी है जी को बात पूछ तो थने के कई है कब कह तो हूँ पांच रुपए
1: मार दो मार दो मैं आज आज
0: मार चाह क्या भी मूवी के भी हुई
1: यादाश्त कमजोर होगी
0: तो कोई बुलाओ कर कर डॉक्टर
1: दिखा लाऊं चल गोइला दिखा लाऊं
0: दिखाऊं नहीं कौन तो मैं कौन
1: ही घर बुलाऊं
0: घर बुला लेकिन अपन जानी जी को अपन है जी को अटी कोई डॉक्टर क्या हुनी हो आज कोई डॉक्टर आया कोई कैंप लागो तो बन बुलाओ कर क्या
1: जरूर बुला लाऊं
0: सा भाई डॉक्टर कौन है आया तो है बुला ला भाई
1: हां बार बुला लाऊं
2: अरे घराला कटी गया ऐसा कोई है घरे
0: घरे तो गर्मी है फट को डाली मैं पधारो कुणो पधारो पधारो मैं पधारो साहब आओ पधारो
2: मैं डॉक्टर अशोक चौधरी हूँ सर अठे कोई गांव माते कोई मरीज आए रहा बाने देखने आया तो अठी सुनियो के नौलब्बा साहब अठी रहे बाऊ मिलने आ रहे तो बाऊ थोड़ी बात करने आवा
0: ओहो वाओ डॉक्टर साहब वा कह नहीं के मां तो घरे बैठा गंगा आई ना आप रो घणो हुनियो रो मां ये तो हुनियो फिक्र लगे उनाला
2: बिल्कुल सर सही सुनियो थे
0: डॉक्टर है जो लगोड़ा हो थे
2: मैं मथुरा दास माथुर जोधपुर माते काम करूं और मगज रो बीमारी जो है मैं देखने रो काम सर
0: ओ मगज रो डॉक्टर
2: बिल्कुल सर
0: अरे अरे तो क्या जी नहीं माल तो क्या होने में हुआ वाह डॉक्टर साहब अशोक मां जी चौधरी साहब हाँ तो बुढ़ा पम किया किया रोग वे हो आप नहीं तो ठाक हो है नहीं किया किया वे आप करे हम गणा आवे क्या नहीं कर रोगी
2: नौलबा साहब यूं जो मगजरी बीमारी हुआ गणी हुए सऊ ज्यादा देखा तो डिप्रेशन की बीमारी कहे मैं मरीज ने की हाकरो नहीं लगे कोई रहा था बैठना रही बात करना रहो मन नहीं करे नींद भी कम आवे पूरा शरीर खटे खटे कदे पग दुखे कदे हाथ दुखे कदे छाती दुखे किन दुख तो रहे और कोई घर आ जाओ तो मन हाकरो नहीं लगे एकला बैठना में ज्यादा ठीक महसूस करे कदे बा नहीं यूं लगे कि ई जिंदगी में तो कोई जीने रो मतलब नहीं रही अब आप मर जावा तो ठीक रहे उल्टा सीधा विचार आवना कदे कहो कैसा हमारा तो दिन पूरा हो गया मैं तो ठीक हो ही नहीं सका ई तरीके का लक्षण रहे और आ बीमारी घनी कोमा नहीं यूं कहो कि लगभग सो मुंह लगभग दस लोग माता हो जावे और जो दूसरी बीमारी मगजरी रहे बा हुलरी सऊ ज्यादा रहे आप या तो जाना के साठ रहे बाद में अपनी थोड़ी याद कम होने लग जावे लेकिन जो हुलरी बीमारी हुए बा भूल जो नॉर्मल भूल हुए भी घणु ज्यादा रहे यू समझो कि आपने जो नॉर्मल चीजा है वह भी अपने करने में जोर आवे कि खानो पीनो है नहानो धोनो है कपड़ा पहनो है उल्टा सीधा पैर लेवे या गलत जगह कदे लेटिन पेशाब कर लेवे आस पास कोई घूमने जावे तो घूमर भी ढंग से नहीं आ सके कटे पड़ जावे या कदे रास्तो भूल जावे तो आ बीमारी भी घनी ज्यादा कॉमन है बुढ़ापे में
0: जानो की नहीं घर जयपुर
2: बिल्कुल सर
0: हमारे बाप भी है गालियां घड़ी काट
2: सर यूं है कि बुढ़ापे में यूं तो थोड़ा दिमाग खराब रहे ही रहे चिड़चिड़ापन हो जावे लेकिन गालियां ज्यादा काटने रो मतलब यूं है कि नॉर्मल तो नहीं हो सके जो आदमी थाने कदे जीकारो नहीं थी और ई उम्र में गालियां काटे तो भाई मगज से थोड़ा बीमार हो सके और इन आप यूं कह सके कि मैं जो साइकोसिस नाम की बीमारी कहे भी मैं आदमी यूं नहीं सोचे कि इन्हें कहीं खटेगा कि तो कहना चाहिए कि तो नहीं कहना चाहिए कहीं बात कहनी चाहिए और वह बीमारी हो सके
0: बड़े यू है क्या डॉक्टर साहब मार तो पूरा शरीर नहीं सबका मार
2: शरीर छका माइनर हो मतलब यूं हो सके ऐसा कोई शरीर की बीमारी हो सके दिमाग की बीमारी या मगज की बीमारी में तो ऐसी चीजा थोड़ी कमी हुआ है छका माइनर हो और एक आपनी जगह मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाए शरीर पूरा कमजोर हो जाए तो बी की वजह से भी छका मार सके दूसरों कारण यू है कि बुढ़ापे में आप खान पान रो उतो ध्यान नहीं रखा और ध्यान भी रखा तो जो आप खावा वो शरीर माते कई बार नहीं लागे तो जो सामान्य आपने विटामिन बी कहे विटामिन डी कहे भाई विटामिन की कमी की वजह से भी पूरा शरीर चपका मारनो शरीर सुनो पड़नो या हाथ पगा में झंझना टोनी वह चीजा हो सके
0: मन याद ही को रह नहीं कौन चीज कट मेली कट है जिको कह नहीं कह है जिको लद ही को नहीं पाचे जो मार तो बस मगज काम करे
2: आ तो सब मोटी बीमारी है सारी उम्र में जी जी जी अपनी उम्र बढ़ती जावे भी हिसाब से आप चीजा भूलता जावा और कई

0: बार एक दो बार कोई चीजा हो जावे तो कोई नॉर्मल चीज है, आ तो जवान आदमी रे भी हो जावे, टाबर रे भी हो जावे, लेकिन आई चीज घनी बार बार होती रहे और आप काम में बराबर आप नहीं कर सका भूलने की वजह से हूँ या चीजा रखने की वजह से हूँ, या कई बार अपन यूं भी वहम हो जावे कि आपनी चीजा कोई दूसरों तो नहीं ले गयो जबकि आपने रखे आप भूल गया, तो आप भूलने की बीमारी हो सके जो सबसे मोटी बीमारी कही जावे बुढ़ापे
1: में। कोई मार्ग ना आवे नहीं पहला हूँ घणी राजी हूँ।

0: भी लड़े तो, और आप रिपार्टी में कई
1: आने कह रही भाई कोटि कोटि बधाई है।
0: हाँ बधाई
1: है, शुभकामनाओं सो का काम करता रहे बड़े।
0: मेरे ला वेणु माधव जीरो भी आ, फोत हो रहा आधे दिन 19 जून में फोत आया, भारतीय प्रभाववादी रेड़ा है और मिमिक्री कलाकार था वे।
1: ओ ठीक ठीक है,
0: सबरी मिमिक्री करता नकल करता,
1: सिगाड़िया काटता है,
0: काटते
1: सिगाड़िया काटनी कोई हाथरी बात को थे मारी, जल्दी जल्दी सिगाड़िया काटो जी को हूँ है मारो हूँ
0: मैं सर जिगाड़ी कदे कौन
1: बाबा नहीं काटी की को चौका जग चावा कलाकार हा तो आने कोई नहीं भूल सके, आने कोटी कोटी नमन है मंदिर रा भूल चुका हूँ बड़ा।
0: आज दिन पोतोड़ा सुभाष मुखोपाध्याय जी बे भारतीय वैज्ञानिक रोड़ा
1: हाँ।
0: और बे कई चीज व्यक्ति फर्टिलाइजेशन नी IVF
1: हाँ।
0: जिक्र करी थी
1: हम गए भाई के भाई देखे आप रे
0: टेस्ट ट्यूब बेब भी जिक्री हुई IVF
1: कोई लुगे भारी पगार नहीं वह नहीं तो बाल
0: इलाज
1: नली में है टाबर भाई आप जन्म आ दिया है हाँ तो जग जाओ काम करियो घने क्या नहीं क्या लुगी जात ने जिन्हें मार और सुख नहीं मिलियो पर सुख दियो तो ऐडा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके परमात्मा पर धोख देवा कोटि कोटि नमन करा मंदिर ने भूल चढ़ाऊ बड़े
0: बड़े। आज दिन फो थोड़ा गुरु प्रसाद महापात्री जी 19 जून 2021 पोते पे भारतीय प्रशासनिक IAS जोड़ा अधिकारी गुजरात राज्य सरकार और भारत के अनुसार कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर
1: चौका काम करिया
0: पद्म से सुसम्मानित
1: करिया भाई गवानी है जो कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मंदिर भूल चढ़ावा और मैं देखे भाई के हमें क्या चौमा दिन उन्नाला है तो राखी दिनों के काले आला जी को हुड़ पाड़ी कर ले थोड़ा बचीड़ो है बो
0: अच्छा
1: बाढ़ काटू कर ले और हमें थे है जी को कहो है देखो थोड़ो नवा दौड़ी है टा रही जाओ
0: डीलारे
1: अरे डीलारे फूका मत दो 4 महीना दौड़ो तुम क्या 8 महीना हो रहा बैठा खाओ
0: सही बात है।
1: हमें होते हैं क्या देखे कि भाई बीज बाजी है जो लाने का विचार हो जो कही है बीज लाने बात है भाई लाना है पर बाजरी में नहीं वह तो मारू नहीं चाहिए तो है जावे नहीं तो बाजरी में अपर है HHB 68 HHB 68 लावनी और एच बाजरी में दूजी बीज है HHB 197
0: अच्छा
1: एक आवे मध्य प्रदेश वाली MH 70
0: अच्छा
1: मध्य प्रदेश वाली 21 मध्य प्रदेश वाली 35 MPH 42 लावनी बाजरी रा तिल लावे तो अपर आप राजस्थान रहे RT 351 RT 372 RT 392 और मूंग लावना है तो अपर GM 4 GM 6 GM 8 RGM 975 और MSJ 118 लावना मोट लावे तो भाई RMO लिखेड़ो है 2251 काजरी आला मोट 4 काजरी मोट 6 और गवार लावनो है तो RGC 1033 और है जी को एक बड़े हरियाणा वाला बीज है 220 और एक है RGC है जो 1038
0: अच्छा
1: लावना ठीक है
0: हमें नहीं
1: फटोफट यू है कि एक बने कोई बोका गुरुवाणी वालों घर जी सुना
0: जरूर।

0: वहां भाई ये महंग बातें होगी, मैं दबो दब रसोड़े में जो भोजनिया तैयार करो, टाइम घड़ो होगो और हमें रख की यू कर जो बढ़िया थाने भावे चढ़ो जिम बना ले और वो फेर लू माला तारा खासा ऊंचा आएगा है और हमें देखे प्रोग्राम टाइम ही होगो पूरो और अंदाजी पड़गो है तो भाई चढ़ा ले वहां ही
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.69 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गोरा और काला फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी, के संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एक और प्यारा सा गीत धर्मा फिल्म से। वर्मा मलिक के हैं गीत के बोल, धुन बनाई है सोनिक ने।

0: चंदन
1: मैं चंदन की खुशबू
0: मैं चंदन मैं चंदन मैं चंदन हूँ बहू हूँ इशारों को अगर

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आशा भोसले की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने। सौदागर फिल्म से रविंद्र जैन का है गीत और संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं अगला गीत, जुगनू फिल्म से। SD बर्मन का है संगीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

मेरे संग किया, तुमने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आरोप फिल्म से। माया गोविंद के हैं गीत के बोल, संगीत है भूपेन हजारिका का।

हीरा पन्ना फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत की बोल थी आनंद बख्शी, के संगीत था आर डी बर्मन का। और आइए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म से।

0: फिल्म संगीत को देते हैं विराम। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुना आपने ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को

0: को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़

0: के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण की प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को

0: हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार थे चंदन दास। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है बनारसी बाबू फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल हैं राजेंद्र किशन के, कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फांसी फिल्म से मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गीत के संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मन्ना डे की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जंजीर फिल्म से। गुलशन बावरा के हैं गीत के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
5: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती।

प्यार तो होना ही था। इस फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था जतिन ललित का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, चलते चलते फिल्म से अभिजीत की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं मन चाहे गीत। दोस्तों, मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे मेल एवं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत, तो आप मेल के माध्यम से हमें फरमाइश भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है manchahegeet531@gmail.com। हमें रहेगा आपकी मेल का इंतज़ार। और ये देखिए, पहली मेल हमारे पास आ गई है। भेजने वाले हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा हयात कॉलोनी अरे रिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा, प्रवीण और इनके बहुत सारे साथी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। सुनिए अपनी पसंद का कार्यक्रम का ये पहला और प्यारा सा गीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ यानी कि स्नेह के साथ, सुन रहे हैं प्यारे प्यारे गीत और लगातार आपकी ईमेल मेरे पास आ रही है। कोशिश यही रहती है कि हम आप सबकी मेल को शामिल करें और आपको सुनाएं आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गीत। चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। भेजने वाले हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा। साथ ही इस गीत की फरमाइश आई है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल राजेश। इस गीत को सुनना चाहा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय, नमन और अपार ने। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का एक और प्यारा सा गीत आग और शोला फिल्म से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में।

जी हाँ, मनचाही गीत कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। आप भी अगर अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है मनचाही गीत 531@gmail.com। हमें रहेगा आपके मेल का

इंतजार, और आपकी मेल बराबर हमारे सामने आ भी रही है। जी हाँ, जुड़े रहिए, बने रहिए स्नेह के साथ। और चलिए बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ। भेजने वाले हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, सिटी दीवाना अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ से डी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। साथ ही से गीत को सुनना चाहा है शहबाजपुर कला कस्बा पाक बड़ा जिला मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन बेगम रईसा, बेटा मुजक्किर रईसा मजहर और बेटी सुमैया महक। इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है डाक गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, साथ ही इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने। चलिए आप सबको अपनी पसंद का एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, ब्रह्मचारी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम। कोशिश यही कि आप सबकी फरमाइश को शामिल करें और आप सबको अपने पसंद के गीत सुनवाएं। जी हाँ, मैं इसने जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। और चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ जो लगातार हमारे सामने स्क्रीन पे आ रही है। भेजने वाले हैं गाँव हीरावली फजलिका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, हिमांशु और इनके परिवार के खूब सारे सदस्य। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, भानु, कमला और गीतिका खोरवाल। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडावा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। साथ ही लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास और रानी। इसी गीत को सुनने की फरमाइश आई है हमारे पास मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, इनके चाचा चाची और पूरा मोलानी परिवार। चलिए आप सब और मैं भी मिलके सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत किशोर कुमार और सपना की आवाज में जांबाज फिल्म से।

जांबाज फिल्म से प्यारा सा गीत सुना आपने। चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश, शीतल, शानू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहनी और बलवीर। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, बबीता, निखिल और तन्वी। धनौरी तेली वाला से निसार, नौशाद, बेबी, आलिया और अयान बाबू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, सीता और गीता। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरामन, प्रणय और प्रतिभा। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद, दुखनी रानी, जूही, इमरान और कापस हीड़ा। बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना, आसमा परी, राबिया, आशु अहमद, फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली। इन्होंने लिखा है कि सदा खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहो, मुझे आदाब और नमस्कार भी लिखा है। जी हाँ, और ये भी लिखा है कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। जी बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगी कि आप सबके आने से हमारे इस मन चाहे गीत कार्यक्रम में रौनक आ जाती है। जी हाँ, आप भी अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का एक और प्यारा सा गीत मोहरा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। भेजने वाले हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला और ओम कुमार, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन साहब, संयम मुस्कान और मास्टर जीवियम, पेपरिया से कमलकांत और श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां पोटिया कला दुर्ग से संजय सुजाता शशांक और सीमा, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी निशा डब्लू और उमर खड़ से अजीता और प्रमिला, चंद्र नगर सहारनपुर से कौशल्या सुरेश और प्रभा जोशी, अंबाला से आशु खान और सोनाली खान, हरियाणा रोहतक से अंकित मोनी प्रिंस सीताराम और साहिल, गांव कलाना राजस्थान से विक्रम सचिन सतीश योगेश और युधव। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सूरज श्रोता संघ सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला करधवा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज और सुरेश राज पुरोहित ने। आइए सुनाते हैं आप सबको अपनी पसंद का एक और प्यारा सा गीत उपहार, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है हमारे पास जेल रोड जालंधर से रोशन मन्नत इशरत और जीनत की। गांव खर खड़ा चौबीसी से गोलू सागर सीताराम अंशिका और तमन्ना, दिल्ली शहर से अस्मा आमना और वली भाई अंसारी, डुमराव बिहार से अस्मा दुखना सदफ वली भाई और फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल अफसरी और अहमद। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है आकोट से विनायक, मंगला विजय, शुभम पवन और संजीव ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला एक और प्यारा सा गीत हम सब की पसंद का सौतन फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। भेजने वाले हैं जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू, उमा राज और दिव्या भारती, गौराया जलंधर से संदीप प्रभा और मेरठ बाईपास से राधिका आरती आरती, श्राफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी डॉली सुरेश और गुजरात से प्रवीण राज और श्वेता, चमनपुरा मोरवी से प्रमिला दीपक और आशु। सुनते हैं इनकी फरमाइश का एक और प्यारा सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, जुदाई फिल्म से।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का एक बार फिर। चलिए बढ़ते अगले फरमाइश की तरफ। भेजने वाले हैं बुल्डाना वडचिंगी महाराष्ट्र से अमोल शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार, बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला और सुमेध कुमार। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है बीड नगर महाराष्ट्र से नंद किशोर, संगीता साक्षी ने। साथ ही जयश्री, अंजलि और बाला साहिब करवा ने। चलिए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पे एक और प्यारा संगीत गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से।

प्यारा सा गाना सुना आपने गंगू भाई काठियावाड़ी से। और चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और वक्त भी हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, मगर कोशिश यही कि जाते जाते भी हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवा दें। राजकोट गुजरात से रश्मि जमा और भारत कुमार, इसी गीत को सुनना चाहा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी पर्ल और विलिस। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया की। सुनिए आप सब अपनी पसंद का एक और प्यारा सा गीत राजपूत फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे मन चाहे गीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वीं स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए

0: Kochli has stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।